सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026 प्रातः के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, आज शुक्रवार का दिन है, 31 जुलाई, और अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आज का शीर्षक, नकारात्मक पहलू। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:10 से, जिसमें आप सुनेंगे आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 177 का वाचन। भक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:20 से। वतन का राग कार्यक्रम, जिसका समय होता है प्रातः 8 बजे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की पुण्यतिथि पर। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे संध्या 6 बजे। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें नगीन तनवीर से मनीषा चतुर्वेदी की खास बातचीत सुनी जा सकेगी।

0: दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का शीर्षक होगा हबीब तनवीर। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अब जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वो कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वो कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो अपने दोस्तों को ये काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता।
1: जीवन सौरभ।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 177 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
5: आचर्षणिप्रा वृषभो जनानाम राजा कृष्टीनाम पुरुहूत इंद्रः स्तुतः श्रवस्यन्न वसोप मद्रिग्युक्त्वा हरि वृषणा याहियर वांग। हे इंद्रदेव, आप प्रजाजनों के पालक, शक्तिशाली मनुष्यों के अधिपति और बहुतों द्वारा आवहनीय हैं। आप स्तुतियों से प्रशंसित होकर हमारे यज्ञ की कामना करते हुए संरक्षण साधनों के साथ बलिष्ठ अश्वों को रथ से संयुक्त करके हमारे समीप आए। ये ते वृषणो वृषभास इंद्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्याह ताम आतिष्ठ तेभिरा याह्यर्वांग हवामहे त्वासुत इंद्र सोमे। हे इंद्रदेव, जो आपके पास बलिष्ठ सामर्थ्यवान और संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले घोड़े हैं, उनको रथ में जोतकर रथ में बैठाकर हमारी ओर आए। हे इंद्रदेव, हम सोम अभिशवन के समय आपका आवाहन करते हैं। आतिष्ठ रथम वृषणम वृषाते सुतः सोमः परिशिक्ता मधुनि युक्त्वा वृषभ्याम वृषभ क्षितीनाम हरिभ्याम याहि प्रवतोप मद्रिक। हे इंद्रदेव, आप बलशाली रथ पर विराजमान हो, आपके निमित्त शक्ति प्रद सोमरस अभिशुत किया गया है, उसमें मधुर पदार्थों को मिश्रित किया गया है। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आप बलिष्ठ अश्वों

0: को विशेष गति वाले रथ से जोड़कर अपनी प्रजा के समीप जाएं। अयम यज्ञो देवया अयम मियेध इमा ब्रह्माण्ययमिन्द्र सोमः स्तीर्णम् बरिहिरातु शक्र प्रयाहि पिबा निषद्य विमुचा हरि इह। हे इंद्रदेव, देवताओं को प्राप्त होने वाला यज्ञ, दुधारू पशु, स्तोत्र और सोमरस आपके निमित्त हैं। आपके लिए यह आसन बिछा हुआ है। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, आप समीप आएं और यहां आसन पर बैठकर सोमपान करें। यहीं पर अपने घोड़ों के बंधनों को खोलें। ओ सुष्टुत इंद्र, याहियर वांगुप ब्रह्माणी मान्यस्य कारोह विद्यामा वस्तो रवसा गृणन्तो विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे इंद्रदेव, भली भांति स्तुत्य आप सम्माननीय स्तोता के स्तवनों को सुनकर हमारे समीप आए। हम नित्य प्रति आपके संरक्षण से आपकी प्रशंसा करते हुए धन संपदा हस्तगत करें और अन्न बल तथा विजयश्री का दान प्राप्त करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 177 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है, और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरी शरण ही।

भक्ति संगीत में प्रभु के कीर्तन का असर इतना तीव्र होता है कि कीर्तन भले समाप्त हो जाए किंतु कीर्तन का असर कभी समाप्त नहीं होता।

प्रेम से पुकारें तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है बस प्रभु का हो जाना। आइए हम भी उनसे उनकी चाकरी मांगें।

आइए हम भी अपना सब कुछ सर्वस्व प्रभु को समर्पण कर दें, सब कुछ संभल जाएगा। हे ईश्वर, आपने जो दिया है वही प्रसाद है, और जो आपने किया है वही आदेश है।

श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। सुबह के ठीक 8 बजे हैं, आप समय मिला सकते हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है वेद मूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की पुण्यतिथि पर। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वेद ध्वनि की पहली लौ हैं, जिससे चेतना ने स्वयं को पहचाना। वेद मात्र ग्रंथ नहीं, वो सृष्टि के अनादि संगीत में उठती

0: तब ऐसी विलक्षण विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम किया। वेदों के ऐसे ही सुप्रसिद्ध भाष्यकार थे वेद मूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। वेदों के अर्थ और उसके अंतर्निहित भाव का जितना गंभीर अध्ययन सातवलेकर जी ने किया इसके उदाहरण बिरले ही हैं। उन्होंने सरल हिंदी अनुवाद करके वेदों का जितना व्यापक प्रचार प्रसार किया वो अतुलनीय है। 20वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति के उन्नयन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वो वेदों के प्रकांड विद्वान तो थे ही, इसके साथ ही वो एक चित्रकार, स्वाधीनता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक भी थे। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का जन्म 19 सितंबर सन 1867 को महाराष्ट्र की सावंतवाड़ी रियासत के पास स्थित कोल गांव में हुआ था। उनके पिता श्री दामोदर भट्ट, पितामह श्री अनंत भट्ट तथा प्रपितामह श्री कृष्ण भट्ट वेदों के मूर्धन्य विद्वान थे। पारिवारिक वातावरण के कारण बचपन से ही बालक श्रीपाद को वेदों का अध्ययन कराया गया। जब वो 8 वर्ष के हुए तब उनकी विद्यालयीन शिक्षा आरंभ हुई। आचार्य श्री चिंतामणि शास्त्री केलकर ने उन्हें संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी। इस तरह संस्कृत के साथ उनका वेद अध्ययन जारी रहा।
1: प्र पर्वतानामुषति उपस्थादश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट छुतुग्री पयसा जवेते। बंधन से विमुक्त होकर हर्षयुक्त नाद करते हुए दो घोड़ियों की भांति अथवा अपने बछड़ों से सस्नेह मिलन के लिए उतावली दो गायों की भांति विपाट व्यास और शुतुद्री सतलज नाम की ये नदियां पर्वत की गोद से निकलकर समुद्र से मिलने की अभिलाषा के साथ प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही हैं। इंद्रेशिते प्रसवम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथ्येव याथः समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे। हे नदियों, आप दोनों इंद्र द्वारा प्रेरित होकर सम्यक रूप से अनुकूलता पूर्वक प्रवहमान हो। हे उज्ज्वला, अपनी तरंगों से सबको तृप्त करती हुई आप दोनों धान्य उत्पत्ति में समर्थ हो। दो रथियों के समान समुद्र की ओर गमन करें। अच्छा सिंधुम मात्री तमा मयासम विपाशमुर्वीम सुभगा मगन्म वत्समिव मातरा सम्रिहाणे समानम योनिमनु संचरन्ति। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हम स्नेह सिक्त मातृतुल्य सतलज नदी के पास गए और विपुल विपाशा नदी के पास गए। बछड़े के प्रति स्नेहाभिलाषिणी गौओं के समान ये नदियां एक ही लक्ष्य स्थान समुद्र की ओर सतत बहती हुई जा रही हैं।
0: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने संस्कृत और वैदिक अध्ययन के साथ ही चित्रकला भी सीखी। दरअसल सन 1887 में एक अंग्रेज अधिकारी वेस्ट्रॉप ने सावंतवाड़ी में चित्रकला शाला शुरू की। यहां गुरु मालवंकर जी से श्रीपाद दामोदर सातवलेकर अत्यंत प्रभावित हुए और उनके भीतर चित्रकारी सीखने की प्रबल भावना जागी। उनके पिता श्री दामोदर भट्ट भी चित्रकला में कुशल थे। इस तरह चित्रकला से उनका जुड़ाव हुआ। सावंतवाड़ी की चित्रकला शाला से चित्रकला सीखने के बाद उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में भी इस कला की बारीकियां सीखी। मूर्तिकला में भी वो अत्यंत कुशल थे। मुंबई में उनकी कला परिमार्जित हुई और उन्होंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। चित्रकारी और शिल्प कला में सर्वोत्तम पुरस्कार मियो पदक उन्हें 2 बार मिला। इसके साथ ही उन्होंने वेदों का अध्ययन जारी रखा। सन 1893 में सातवलेकर जी की नियुक्ति जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षक के रूप में हुई। ये वो समय था जब बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव का आयोजन कर स्वाधीनता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। देश की परिस्थितियों से सातवलेकर जी का गहरा सरोकार था। धीरे धीरे वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। मुंबई के बाद वो हैदराबाद में लगभग 13 साल रहे। यहां प्रसिद्ध चित्रकार श्री देउस्कर जी के साथ उन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया था। वो आर्य समाज के संपर्क में भी आए तथा वेदांत चर्चाओं में भाग लेने लगे। चित्रकारी उनका व्यवसाय था, वेदों का अध्ययन उनकी आस्था और स्वाधीनता संग्राम में सक्रियता उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने वेदों को आधार बनाकर जन जागरण के लिए अनेक लेख लिखे, स्वदेशी पर व्याख्यान दिए। उनका प्रसिद्ध लेख वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता जब छपा तो इसका व्यापक प्रभाव हुआ। बाद में ये लेख तेजस्विता नाम से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। अंग्रेजों ने इस लेख को राजद्रोह की भावना भड़काने वाला माना था, जिसके कारण उन्हें 3 वर्ष कारावास की सजा हुई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वराज का सपना उनकी आंखों में झिलमिलाया करता था।

0: हस्त इषवः पराता भगवो वप।
1: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का राष्ट्रवादी चिंतन सबकी दृष्टि में था। यही कारण है कि हैदराबाद के निजाम ने उनका विरोध भी किया था। यहाँ सातवलेकर जी ने विवेक वर्धिनी नामक शिक्षा संस्था भी स्थापित की थी। निजाम की आपत्ति को देखते हुए वो हरिद्वार और लाहौर में कुछ समय बिताने के बाद औंध में भी रहे। यहाँ उन्होंने स्वाध्याय मंडल की स्थापना की। जब वो वलसाड़ जिले के एक गांव में रह रहे थे, तब स्वाध्याय मंडल की पुनः स्थापना भी यहाँ उन्होंने की थी। वो प्राचीन संस्कृत वांग्मय के परिष्कार और प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न थे। सातवलेकर जी ने लगभग 409 ग्रंथों की रचना की, जिनमें सर्वाधिक प्रतिष्ठा उनके वेद भाष्यों को मिली। आचार्य सायण के वेद भाष्यों के बाद सातवलेकर जी के वेद भाष्य ही सर्वाधिक प्रामाणिक और सटीक माने गए। उन्होंने वेदों के सुबोध भाष्यों की रचना की। उन्होंने सायण भाष्य, जो कि संस्कृत में था, उसके विपरीत सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझ सकें। इस तरह वेदों के गूढ़ ज्ञान को आम जन तक पहुंचाने तथा वेदों के वैज्ञानिक और व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य था। सातवलेकर जी का मानना था कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उनमें जीवन के हर पहलू के लिए ज्ञान मौजूद है। उन्होंने सायण भाष्य की मान्यताओं से हटकर अपनी स्वतंत्र व्याख्या भी प्रस्तुत की, जो उस समय के धार्मिक परिदृश्य में एक नया दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि वेदों का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है तथा समाज के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया।

वेद मूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने वेदों के भाष्य के साथ ही वेदों की मूल संहिता भी लिखी। इसके अलावा अन्य कई ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख हैं वैदिक व्याख्यानमाला, गो ज्ञान कोश, वैदिक यज्ञ संहिता, वेद में कृषि विद्या, वैदिक सर्प विद्या, महाभारत सटीक, संस्कृत पाठमाला, महाभारत की समालोचना आदि। सातवलेकर जी ने छात्रों तथा सामान्य पाठकों के लिए वेदों की भाषा को सरलता पूर्वक समझ सकने योग्य बनाने के उद्देश्य से संस्कृत स्वयं शिक्षक पुस्तक माला भी लिखी थी। उनके द्वारा संकलित वैदिक राष्ट्रगीत एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें राष्ट्र शत्रु का विनाश करने में सक्षम वैदिक मंत्रों का संग्रह है। ये ग्रंथ मराठी और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। यही कारण है कि इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली गई थीं। सातवलेकर जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के कई ग्रंथों का अनुवाद किया था। उन्होंने हिंदी में वैदिक धर्म और मराठी में पुरुषार्थ नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ किया था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। संघ चालक के रूप में उन्होंने अनेक शाखाओं का आरंभ किया। 16 वर्षों तक उन्होंने इसमें काम किया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक जो पुस्तक उन्होंने तैयार की थी, वो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। सातवलेकर जी ने वेदों को स्कूलों में पढ़ाने पर भी बल दिया था। वो कहा करते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज के उत्थान के लिए काम आए। वेदों का ज्ञान केवल पाठ करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने और समाज को अनुशासित बनाने के लिए है। वेदों में वो शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाती है। उनके इस बहुमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया था। 31 जुलाई सन 1968 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सार्थक जीवन का यही संदेश था कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी संस्कृति को समझें और उसे आधुनिक समय से जोड़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करें। ऐसे वेदमूर्ति महामनीषी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: दोस्तों नमस्कार, आमने सामने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, रंगकर्मी और नया थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगीन तनवीर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
2: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।
1: आपने बचपन से हबीब तनवीर जी को केवल एक महान रंग निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी देखा है। और इन सब से इतर नगीन जी बहुत ज्यादा अपने भीतर लोक गायकी के एसेंस को छुपाए हुए हैं, हमें जब तब उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाती है। आपका बहुत स्वागत है नगीन जी स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँ तो वो ये कि नगीन तनवीर खुद नगीन तनवीर को कैसे परिभाषित करेंगी?
3: कलाकार के तौर पर और एक सच्ची साधक के तौर पर।
1: वाह, तो ये साधना आपकी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं और जब भी आपको सुना है स्टेज से तो हर बार लोक गायकी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। तो क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी आवाज़ में कुछ सुन सकते हैं?
3: मैं एक बहुत पुराना पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाऊंगी जो फिल्मों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑथेंटिक जो जैसा था वैसा मैं पेश कर रही हूँ।
1: जी।
3: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनना, आंखें बंद कर ली जाए और आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की माटी में। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सिक्स का ये गाना हम लोगों ने तो बिल्कुल खड़ी हिंदी में ही सुना है, लेकिन आपके मुंह से लोक भाषा में लोक रंजित तरीके से सुनना बहुत आनंददायक था। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि हबीब तनवीर जी को अपने आप में रंग धर्म का, रंग कर्म का विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी विरासत के साथ जब आप रहते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जब आप रहते हैं, तो शेडो इमेज का भी एक कहीं ना कहीं असर आ जाता है। आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कि पिता मेरे एक बरगद के पेड़ जैसे थे,
0: जी
1: तो उसके प्रभाव में मैं थी। और पहले ऐसा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है।
0: जी
1: अब अपनी मेरी खुद की पहचान अब बन रही है। इसलिए कि इतना उनका ऑरा था, ऊर्जा का, और रौब भी था। और ये मैंने देखा है कि एकाग्रता, जिसे अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। उसी ऊर्जा से लोग मतलब कांपते भी थे, डरते थे और हिचकिचाते थे। उसी ऑरा का असर मुझ पे भी पड़ा, ऊर्जा का असर। और जैसे कि मैंने कहा कि बरगद के पेड़ जैसे थे, आपने कहा ना कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय थे, तो बरगद का पेड़ सबको समा लेता है। वैसे ही थे हबीब साहब। बहुत सालों तक उस प्रभाव में मैं झुकी रही, कह सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन अब वो बदल गया है कुछ सालों से।
0: जी जी जी आपकी माँ मोनिका मिश्रा जी खुद बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थीं। आपको क्या लगता है हबीब तनवीर जी के रंग कर्म, नया थिएटर और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा में मोनिका मिश्रा जी का क्या हाथ देखती हैं आप?
1: मोनिका मिश्रा जी को पूरी तालीम थी अमेरिका से, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन जब उनका विवाह हुआ हबीब साहब के साथ, तो उनको लगा कि ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तो उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया, वरना ईगो क्लैश होता
0: जी
1: जबरदस्त। तो एक कदम पीछे कर लिया और फिर वो बैक स्टेज काम संभालती थी, प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम। और पहले रोल भी कराए हबीब साहब ने उनको, तो रोल करती थी, बहुत अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पीछे वो हट गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो एक टीम वर्क जैसे काम करने लगे। हबीब साहब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी, वो सारे टिकट छपवाती थी, इनविटेशन कार्ड्स छपवाती थी, पासेस, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले हुआ करता था, दिल्ली में सिस्टम था, वो सब दौड़ भाग का काम वो करती थी,
0: जी
1: पब्लिक बस में जाके ये सब करती थी। तो दे वर्क लाइक अ टीम। और ये पहली मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में
0: जी
1: ऐसी टीम वर्क की। और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए बगैर उनके सलाह मशवरा के बगैर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते थे हबीब साहब, चाहे वो डायरेक्शन का कुछ काम हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी हो या स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट हो, संवाद हो, हर चीज़ में मोनिका मिश्रा जी को दखल था। हर चीज़ में उनसे सलाह लेते थे कि ये मोनिका ये ठीक है कि नहीं है।
0: जी
1: तो कभी कभी वो मान लेते थे उनकी बात, और जब उनको वो आइडिया पसंद नहीं आता था तो उनसे कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप मतलब दूसरा रास्ता अपनाते थे, दूसरा जो उनको ठीक लगता था,
0: जी
1: और कहते नहीं थे कुछ उनसे।
0: जी
1: तो मोनिका मिश्रा जी समझ जाती थी कि अब ये मेरा ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत था, उसको कबूल कर लेना, उस पे बहस ना करना, तर्क ना करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
0: आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं नगीन जी, क्योंकि हम जब और बच्चों की परवरिश देखते हैं तो भाई पढ़ाई करो, उठो, चलो स्कूल जाना है, लेकिन हबीब साहब का तो अपने आप में कभी कहीं उनका थिएटर का प्रस्तुति होनी है, कभी कहीं जाना है, मतलब कहते हैं ना कि मुकाम से ज़्यादा सफ़र में कुछ लोग रहते हैं, तो आप कभी बहुत समय सफ़र में गुजरा होगा, आप भी हबीब साहब के साथ इधर उधर काफ़ी जाती रही हूँ, कैसा रहा आपका बचपन?
1: सबसे पहली स्मृतियां तो वो हैं करोल बाग की, कि किराए का घर था और ऊपर छत पे बरसाती थी, वहाँ सब ट्रंक्स थे थिएटर के, वहीं पे एक वो नल की टोटी थी पीतल की, वहीं पे 8-10 छत्तीसगढ़ी वहाँ रहते थे और वहीं नहाते थे, खाना पकाते थे चूल्हे पर। पहले तो ये स्मृति रही। फिर जब हबीब साहब संसद सदस्य बने राज्यसभा, तो हमारी अम्मा तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ना है तुम्हें, होमवर्क करना, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में मुझे तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी बहुत अच्छी है, नाच और गाना, गाना और नाच। फिर वो पढ़ाती थी, कहती थी कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ियों के पास जा रही हो, 1 घंटे में वापस आना है, ये फला चैप्टर करना है, ये होमवर्क करना है। बहुत सख्त थी वो, तो हम टूर में नहीं जाते थे, वो मेरे साथ रुकती थी घर में। फिर कॉलेज डेज में फिर मैं टूर में जाने लगी, लेकिन जब तक स्कूल था मैं कोई टूर में नहीं जाती थी और अम्मा भी नहीं जाती थी। दिल्ली से बाहर अगर टूर हुआ, वो पढ़ाती थी तो वो समर्पित थी मेरे प्रति कि भाई बच्ची को पास होना, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था, और क्या खिलाना है बच्ची को, भाई गिज़ा कि भाई बच्ची थक भी जाती है, और ये तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी हमारी अम्मा।
0: आपकी संगीत की तालीम भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हुई है, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
1: मैं 8 साल की थी तब शर्वरी मुखर्जी, उन्होंने सिखाया 2-2.5 साल, स्कूल में पढ़ाती थी वो, बड़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मंदिर से कोई स्कल्पचर तराशी हुई निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर जब वो नहीं सिखा पा रही थी तो उनकी जो गुरु थी उस्तानी दीपाली नाग, मतलब दीपाली तालुकदार, जो डॉक्टर बीडी नाग चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने स्वयं फैयाज खान साहब से तालीम ली थी आगरा घराना, फिर उनके अंडर मैंने संगीत प्रभाकर विशारद 6 साल का वो किया
0: जी
1: स्कूल के जमाने में। फिर बड़ौदा चली गई, माँ बाप पूछ रहे थे कि अब कौन से कॉलेज में डालें, इसको तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो दीपाली माशी बुलाते थे हम, तो वो कहने लगी कि बड़ौदा सबसे अच्छी जगह है। बड़ौदा गई, वहाँ 4 साल रही, फिर गुरु की तलाश थी, तो एक हमारे नया थिएटर में थे वो चेलो प्लेयर थे, ऑल इंडिया रेडियो में ए ग्रेड आर्टिस्ट ज्ञान शर्मा, उन्होंने कहा हमारी अम्मा से, मोनिका सुलोचना बृहस्पति जी से सिखवाओ इसको। तब हमने सुलोचना बृहस्पति जी से 8-10 साल तालीम ली
0: जी,
1: सदरंग रामपुर सदरंग परंपरा
0: जी।
1: फिर यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए, फिर गुंदेचा बंधु से तालीम ली 6 साल
0: जी,
1: उनसे तालीम ली। फिर किसी ने कहा कि तुम फोक गाती रही हो तो क्यों ना तुम ठुमरी तालीम लो, इसलिए कि वो सबसे नजदीक है लोक संगीत के, और लोक संगीत का पॉलिश्ड रूप ठुमरी गायन है
0: जी।
1: तो पूर्णिमा चौधरी जो बनारस घराने की हैं, महादेव मिश्रा जी की प्रथम शिष्या, बहुत अच्छी शिष्या, उनसे सीखो। तो मैं कलकत्ते जाती थी साल में 3-4 बार उनसे तालीम लेने, 2 साल उनसे तालीम ली ठुमरी तालीम, 2-3 साल वो चली
0: जी।
1: इस तरह से
0: अब ठुमरी की बात चल रही है और नगीन जी के मुंह से कुछ सुना ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए इसे थोड़ा और सुरमय बनाते हैं इस बातचीत को, बीच बीच में बताइए क्या सुना रही हैं आप।

0: जल्दी खत्म हो जाता है तो लगता है जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर सपने से जगा दिया हो। नगीन जी, आप बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार आपके कॉन्सर्ट में मैं पहुँची थी और वहाँ पर आप गा रही थी गए दिनों का सुराग लेकर, इधर से आया उधर गया वो, और शायद बहुत से लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, पर वहाँ मेरे आसपास बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और शायद ईश्वर के उतनी ही नज़दीक भी, इसलिए लोगों को वो बहुत जल्दी छू जाती है। नगीन जी, हम वापस लौट आए हैं आपकी गायकी से। आपने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, फिल्मी जगत के लिए भी गाया है, उस अनुभव को कैसे देखती हैं आप?
1: पहली बार मौका मिला था तो अनुषा रिजवी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने कहा नगीन मुझे तुम्हारा गाना चाहिए और चोला माटी जरा गा के सुनाओ, फोन पे बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने गा के सुनाया। उन्होंने कहा इसको हम एक फिल्म में इस्तेमाल करेंगे जो मेरी फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस हैं, प्रोड्यूसर आमिर खान हैं, तुम गाना चाहोगी? मैंने कहा वाह, ये तो चांदी हो गई, क्यों नहीं। और जिस साल बाबा का इंतकाल हुआ था उसी साल जून में उनकी मौत हुई और दिसंबर 2009 में बांद्रा में स्टूडियो बुक हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग हुई पीपली लाइव के लिए। चार पांच टेक्स के बाद रिकॉर्डिंग हुई, फाइनलाइज हुई और सब लोगों ने बहुत सराहा और बहुत कि बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है। तो वो एक गाने ने मुझे बिल्कुल मशहूर कर दिया।
0: तो वो एक गाना जो है आपका वो हमको सुनवा दीजिए तो हमारे श्रोताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गीत है।
1: चोला माटी तो जीवन दर्शन है और लव्स लिखे थे गंगाराम सिवारे ने जो एक लोक कवि थे बहुत अच्छे
0: जी,
1: और मंडला की ये आदिवासी धुन है पारंपरिक
0: जी।

द्रोणा जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी संगी कारण जैसे दानी बाली जैसे

0: बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब जब जब किसी को गलत फहमी हो और वो इस जीवन दर्शन से परिचित हो जाए तो अपने आप जमीन पर लौट आएगा। मैं वापस नया थिएटर की तरफ जाना चाहूँगी कि उसको कई लोग कहते हैं कि हबीब साहब बहुत प्रयोग करते थे नया थिएटर में, कहना चाहिए कि रंगमंच की प्रयोगशाला ही थी वो। आप इन चीज़ों को कैसे बताना चाहेंगी विस्तार से?
1: पहली चीज तो ये है कि जितने लोक नाट्य धर्म शैली के हैं हिंदुस्तान में फोक थिएटर्स, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत रहता है आशु रचना का। तो हरियाणा में स्वांग शैली कहलाती है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, और राजस्थान में भी शैली है वहाँ भी होता है, और एक और क्षेत्र में काम किया गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। तो उसमें कहाँ लोक नाट्य धर्म और कहाँ क्लासिकल, इतनी बारीक लकीर थी कि पता नहीं चलता था। तो इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए के फोक एक्टर्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजर्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यंग का पहलू, इसलिए के हसोड़ हैं, तो व्यंग का पहलू, सटायर जिसे कहते हैं, वो कूट कूट के भरा हुआ है। हल्की एक्टिंग, व्यंग्यात्मक, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल, ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे। तो इम्प्रोवाइजेशन, फिर किताबें उन्होंने खरीदी यूरोप से, इंग्लैंड से, इम्प्रो, तो उसको स्टडी करते थे, पढ़ते थे, और फिर देखते थे। दक्षिण भारत भी जाके उन्होंने कुडियाट्टम, ऐसे बहुत सारी शैलियाँ देखी हिंदुस्तान में, गुजराती थिएटर देखा, पारसी थिएटर में, मराठी थिएटर देखा, सब कुछ, और फिर क्या अमल हो सकता है मेरे थिएटर में, ये उन्होंने खूब मंथन किया, पढ़ा, जो विलायत से किताबें लाए थे, और देखा, फिर खुद का मंथन चला, फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, इस पे मंथन भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्प्रोवाइजेशन, उसी में ड्रामे बने हैं
0: जी,
1: और उसी से इम्प्रोवाइजेशन के तरीके से ही स्क्रिप्ट का गठन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई, संवाद। तो वो समझा देते थे कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ी मंडली को ये है कहानी, इसको तुम लोग आपस में बात कर लो, आधा घंटा 45 मिनट ले लो और मुझे करके दिखाओ। तो वो दिखाते थे, करके दिखाते थे, तो फिर कहते थे फिर से आपस में बातचीत करो और दोबारा करके दिखाओ। खुद भी मेहनत करते थे, दूसरों से भी खूब करवाते थे, उनको लगता था कि अब मुझे दखल देना है, तब वो दखल देते थे। शुरुआत में ये हुआ कि शुरू शुरू में जब छत्तीसगढ़ी मंडली बनी 1970-71 में, तो शहरी और छत्तीसगढ़ियों को मिला जुला रूप उसे ड्रामे होते थे, मसलन आगरा बाजार, लेकिन फिर वो हिंदी के संवाद उनको कहते थे कि ये बोलो, तो वो बहुत, कहीं उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता था, वो नहीं बोल पाते थे, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था हबीब साहब के इनको जब ग्रामीण नाचा थिएटर में देखा तो बेबाक होके एक्टिंग कर रहे, यहाँ ये कौन सी चीज है जो रुकावट डाल रही है। बहुत धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि हिंदी में बुलवा रहा हूँ इसलिए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि भाई यही संवाद तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो, उसमें फिर रौनक आ गई और रोशनी आई। तो फिर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि अब मैं छत्तीसगढ़ी में करूँगा। उनको समझ में आया कि ये जो क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही है उनके जहन में कलाकारों के, ये भाषा की वजह से आ रही है। फिर जब सही तरीका मिल गया ना, तो फिर वो फॉर्मूला बन गया, फिर उसी ढर्रे से वो चलते थे। अगर उनको लगता था कि कुछ कमी है तो कुछ पढ़ लेते थे, किताब ढेरों किताबें खरीदते थे विलायत से, पढ़ते थे, फिर सोचते रहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि फैमिली थिएटर जैसे था, और जब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को देखा दिल्ली वालों ने, तो उनको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया, बहुत कठिन था, अफिल टास्क था, बहुत संघर्ष किया, हर कदम पे संघर्ष था। लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन गया, तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है H2O, वैसे उन्होंने परंपरा, जड़ों से चीजें ली और उनको हूबहू ऐसे ही पेश कर देना, नहीं, वो कैसे इस ड्रामे में फिट होती हैं, वो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम, तो कैटलिस्ट का काम किया। अंदर दिल और दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ
0: जी,
1: और फल की कभी चिंता नहीं की। वो फल जब मिला तो छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। तो ये बहादुरी से चलते रहे, दृढ़ता पूर्वक चलते रहे।
0: अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है, वो कितना सच है ये तो आज आप ही बताएंगी, कि हबीब साहब को जब जरूरत होती थी कि मंच पर कोई सब्जी वाला आ जाए तो सब्जी वाले को बुला लेते थे, और मंच पर जब कोई चौकीदार की जरूरत हो तो चौकीदार को बुला लेते थे। इसमें कितनी सच्चाई है
1: भाई। 1954 में जब आगरा बाजार तैयार हुआ फुल फ्लेजेड ड्रामा
0: जी,
1: तो एक बटला हाउस था, एक मतलब फूस की छत थी उसकी, उसको बटला हाउस कहते थे जामिया मिल्या में। हाँ। और जामिया बिल्कुल जंगल ही था, और ओखला के बाजार वालों को लिया
0: जी।
1: और एक गधे को भी लिया, और गधे ने स्टेज पे लीड कर दी। तो बाजार का सिर्फ नजारा नहीं, बाजार की खुशबुएं बदबुएं सब उसमें प्रोडक्शन में। और फिर बाद में उन्होंने पाया
0: जी
1: कि ऐसे काम नहीं चलेगा, द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड इन एक्टिंग, वरना किसी को भी खड़ा कर दो स्टेज पे सब्जी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर
0: मुझे लगता है ना कभी हुनरवाना होगा कि गधा भी मंच पर आया हो। ये बहुत अच्छा।
1: फिर जब रिवाइव हुआ 1970 में आगरा बाजार
0: जी,
1: तो फिर हुनरमंद प्रतिभाशाली कलाकारों को एक्टर्स को ही लिया
0: जी। हाँ, देखिए ना, तो इतने सालों बाद भी आज उनकी बात हो रही है, और उन्हें थिएटर का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो शायद उसमें यही सब बातें रही होंगी कि इतने प्रयोग, आप देखिए कहाँ मुनासिब है कि लोग इतने प्रयोग करें और उसे मंच तक ले आएं, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो नज्म कौन सी थी आपके मुंह से आज लाइव हम सुनेंगे जी?
1: नज़ीर अकबरावादी की है, और एक तवायफ गाती है तो सरापा कहते हैं उसे, सरापा यानी सर से लेके पैर तक पूरा नायिका का वर्णन
0: जी।
1: तो मैं पहला बंद गाऊंगी, हो रेज करी

0: ऐसी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और शौक है जो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को पता लगे। नगीन जी रंगों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है और अब वो भारत भर के हैंडलूम को, स्पेशली साड़ियों को बहुत पसंद करती हैं। और हालांकि पता नहीं उनको ये सवाल कैसा लगेगा,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: बहुत
1: श्रोताओं
0: अच्छा।
1: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि नृत्य से, लोक गायकी से उनका बहुत संबंध रहा है और थिएटर में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में ये चुनाव करते करते नगीन जी आपको किसी खूबसूरत साड़ी की तलाश में बाजार में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। नगीन जी, आपके सारी बातों को करते हुए आज बहुत आनंद आया। बस चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक कोई भी आपकी पसंद का, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे वो लोकगीत हो या कोई नज्म हो या कोई असुआ हो, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें।
0: नहीं, साड़ियों के बारे में तो मैं ये कहूँगी, ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा।
1: जी
0: उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, साउथ इंडियन थी वो, 7 हाथ की थी
1: जी
0: और वो जामनी थी और कत्थई रंग की थी। उसमें छुपा हुआ जो रंग था ताने बाने में, वो नेवी ब्लू था, नीला, गहरा नीला।
1: जी
0: तो उसमें उन्होंने ब्लाउज मेरे लिए सिलवाया, कोसे का, गहरे नीले रंग का,
1: जी
0: और सफेद दुपट्टा, रानी का कॉस्ट्यूम चरणदास चोर के लिए।
1: जी
0: तो ये मैंने उनसे सीखा कि रंगों में बैलेंस होता है, और जीवन में भी रंग होते हैं तो वस्त्रों में भी रंग होते हैं, और सबका परस्परस आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, कनेक्शन है, चाहे वो
1: बिल्कुल
0: थिएटर हो, कुछ भी हो।
1: जी।
0: और वो साड़ियाँ खरीदते थे हबीब साहब, वही खरीदते थे कॉस्ट्यूम के लिए, और जैसे अम्मा के लिए साड़ी खरीदते थे, मेरे लिए भी खरीदते थे। तो उनको शौक था साड़ियाँ खरीदने का,
1: जी
0: वो सब लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदते थे बहुत मज़ा लेके।
1: जी
0: ये एक नज़्म है नज़ीर की, तो वो मैं गाना चाहूँगी।
1: जी
0: पतंग वाले के पास आता है नौजवान शख्स और वो ये गाता है,
1: जी
0: तो उस एक दो बंद गाना चाहूँगी।

गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला सहरा।

0: गरु फूट के रोया तो मेरे पांव का छाला। ये मुशायरे की धुन है पारंपरिक।
1: आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, पर आज पहली बार ये मैं शायद किसी इंटरव्यू के आखिर में कह रही होंगी कि अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सारी बातें हैं नगीन जी करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात का एक अंत ज़रूरी है। और आज की बातचीत केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक विरासत से साक्षात्कार था जिसने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। आपने अपनी स्मृतियाँ, अपने अनुभव, अपने मन की बातें हमारे साथ साझा की और बहुत दोस्ताना तरीके से की, ये कहना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद, और हम ज़रूर आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपके बहुत सारे गीतों के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है नगीन तनवीर जी के साथ ये खास मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया नगीन जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका नगीन तनवीर। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं रचना पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आपको लिए चल रहे हैं मुशायरे में
1: कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
2: आए, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ।
2: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: ये अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा, कार्यक्रम यादे बशीर बद्र के तहत।

0: तो आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मुशायरे में।
1: जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे चित्रांश खरे।
2: एक मतलब दो चार शेर देखें कि बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बिछड़ने का इरादा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और शेर सुने

0: शेर सुने कि मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था।
1: वाह वाह।
0: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, शुक्रिया
1: मुझे,
0: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था। शेर सुने कि तेरे जलवों में बस चिंगारियां थी, तेरे जलवों में बस चिंगारियां थी, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। तेरे जलवों में बस चिंगारियां थी, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। और शेर सुने कि नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था। अब थोड़ी बड़ी बहर की तरफ बढ़ता हूँ, ये गजल सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए। बशीर बद्र साहब के साथ मेरा बहुत बैठना उठना रहा है शुरुआती दौर में, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे बशीर बद्र साहब का भी साया मिला, और वसीम साहब के साथ तो मैंने 13-13, 14-14 दिन एक साथ हम लोग रहे और काम किया।
1: क्या बात,
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लम्हात हैं ये।
1: क्या बात।
0: सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए। शेर सुने कि दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। और ये शेर सुने कि वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: क्या कहने,
0: वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब पढ़ा आपने। ये थे जनाबे चित्रांश

0: जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे फरहान मंजर।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, बतौर खास समात फरमाइएगा। अर्ज किया है कि तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। बहुत शुक्रिया हजरत, ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया।
0: वा, वा,
1: मेरे तजुर्बे ने कहा यही, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, नवाजिश। वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया, जिसे आंधियों ने बुझा दिया। और हजरत ये शेर भी समाप्त फरमाइएगा कि तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया।
0: वाह,
1: तेरी एक नजर का कमाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तो कहा शनावर वक्त ने, जो किनारे नाव लगी मेरी तो कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे पार किसने लगा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे तुझे पार किसने लगा दिया, तुझे पार किसने लगा दिया। नवाजिश हो रही है इस गजल का आखिरी शेर के, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतो ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया। रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतो ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया, मेरे घर का किसने पता दिया। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप समात फरमा रहे हैं हजरत। एक गजल पढ़ने से कबल दो चार शेर और आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि बहुत छोटी सी बहर में गजल कहने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, दिल अगर बार बार टूटेगा। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, नवाजिश। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, दिल अगर बार बार टूटेगा, दिल अगर बार बार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका, फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका,
0: फिर तेरा
1: एतबार, तुझे इंतजार है उसका, फिर तुझे इंतजार है उसका, फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तेरा एतबार टूटेगा। मतलब पढ़ता हूँ कि उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में। उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ न सके मुश्किलात आंखों में। हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, और ये मक्ता पढ़ता हूँ हजरत और आपकी ज़हमत तमाम के कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, दिखाई दे भी तू हमको वो बात आंखों में, दिखाई दे भी तू हमको। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।
0: वाह वाह वाह वाह। दोस्तों ये थे जनाब फरहान मंजर साहब, जिनका कोरवई से ताल्लुक़ था और अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपको महसूस कर रहे थे।

0: मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री ने कलाम से नवाजा।
1: मतलब अर्ज किया है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है।
0: वाह।
1: दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है। और शेर मुलायजा फरमाए, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। मतला चंशेर और देखें, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। और शेर देखें कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। और मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है।
0: वाह वाह।
1: कि मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। एक गजल से चंद अशआर और देखें। मतला है कि ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया। कि आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया।
0: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: मतला चंशेर और देखें। हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं।
0: वाह।
1: हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। कि जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। और अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। कि अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। आखिरी गजल से चंद अशआर
0: जी शाद।
1: मतला अर्ज किया है, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। शेर मुलाहजा फरमाए कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना।
0: वाह,
1: बहुत शुक्रिया। कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। और शेर की, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। बहुत शुक्रिया।
0: वाह वाह वाह वाह। ये थी मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा।

0: दरख्त जब कलम बन जाए तो वो जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रूप धार लेते हैं।
1: पेश करता हूं कि दियों का कद घटाने के लिए
0: रातें बड़ी करो,
1: दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, ये क्या जाने हैं, ये सुन के बताइए शेर, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमीन का इस्तियारा है। भोपाल में बताने की जरूरत नहीं है, मिसरा पढ़ रहा हूं कि ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमीन का इस्तियारा है, इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना।
0: वाह,
1: इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता।
0: वाह,
1: मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता,
0: जिंदाबाद
1: में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। आइए अब मतलब सुनाता हूँ, पेश करता हूँ कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद।
0: वाह,
1: फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिताक, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: हर
1: शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ,
0: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। पेश करता हूँ कि मालिक तेरा करम कि बड़ी लंबी उम्र दी।
0: आहा,
1: सुने बाहुबल, मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी और उसमें ये कि बोझ किसी पर नहीं हुए।
0: वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी और इस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए।
0: वाह वाह,
1: आखिर में तीन चार शेर और सुनाऊंगा, ये भी नई गजल सुनाऊंगा। मतलब सुनिए, बहुत अच्छा सुना है आप, आपने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी था। अना को राह में आने न देना, अना को
0: राह में आने न देना,
1: आने न देना साहब, वो शायरी ही नहीं होती जो बनाई जाए, शायरी वही होती जो होती है।
0: वाह,
1: आइए, मैं तो एक एक लफ्ज़ का गुलाम हूँ, पूरी जिंदगी एक एक लफ्ज, मैं तो क्या कह सकता था, बस मुझे उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, लफ्जों ने मुझे कहा।
0: क्या बात है,
1: पेश करता हूँ कि अना के बीच, मैंने अर्ज किया था आपसे कि अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: राह में आने न देना,
0: वाह वाह वाह,
1: अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो
0: लौट आना,
1: अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है।
0: आहा,
1: गजल वालों, भोपाल वालों, गजल वालों सुनो, कि ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
0: वाह,
1: ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है,
0: बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना
1: बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना
0: क्या कैफियत है सर। हाँ हाँ,

नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रचना पाठ।

0: तो आइए सुनते हैं कविताएं। सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं अन्ना माधुरी तिर्की।
1: सभा के प्रारंभ के लिए अन्ना माधुरी तिर्की जी को पुकार रही हूँ, आप आए और हम सब करकल ध्वनि से इनका यहाँ पर स्वागत करें। स्त्री रचनाशीलता समारोह के सुंदर आयोजन के लिए मैं भारत भवन की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी दो रचनाएं पढ़ूंगी, पहली रचना बहुत छोटी होगी, दूसरी थोड़ी बड़ी, आपका ध्यान चाहूंगी। मेरा सच खामोश था, कहा कुछ और था मैंने, कहा कुछ और था मैंने, सुना तूने वही जो पसंद था कानों को। कहा कुछ और था मैंने, सुना तूने वही जो पसंद था कानों को। समझाया भी पर समझा वही, समझाया भी पर समझा वही, जिसमें सहूलियत तुझे, निष्कर्ष वही निकाला जो मन को स्वीकार। अहंकार के पर्दों से ढकी तुम्हारी आँखों ने कागज़ के उस टुकड़े पर किया ही नहीं गौर, थी जिसमें सच की इबारत, शब्दाडंबर से परे मेरा सच उस वक्त खामोश था, शब्दाडंबर से परे मेरा सच उस वक्त खामोश था। इंसानों की गली में कुदरत ने उसके शरीर को सफ़ेद हल्के भूरे रंगों के बालों से सजाया था, वह सुंदर बहुत थी, नाम था वाइटी। दायरा उसका तय था दाईं गली से 30 कदम आखिरी मकान तक, उसके और आगे जाने पर बिरादरी के जानवरों से सताए जाने का भय था। ठौर नहीं था उसका कहीं, गली की सड़क पर ही दिन गुजरता, रात कट जाती वहीं। प्यार से कोई दे दे खा लेती चुपचाप, मिलता जितना खाने को कहीं उससे ज़्यादा लौटाती, सबको दुलारती नेह भरी आँखों से, मोह लेती मन, लाड़ जताती जाने वालों पर, घर लौटने वालों पर छिड़कती जान, बिन पगार गली की करती चौकीदारी। पहली दफ़ा बनी थी वह माँ 3 बच्चों की, तीनों की शक्ल उस जैसी, तब बिजली के खंभे के नीचे डेरा था उसका, कड़कड़ाती ठंड थी, पहला बच्चा चल बसा, दूसरे को आन गली के कुत्तों ने नोच डाला, वह किलपती रही तड़पती रही, मृत बच्चे को मुंह में दबाए इस दरवाजे से उस दरवाजे लिए लिए फिरती रही, दुखी मन से लोगों को देखती ज्यों कह रही हो कि कोई तो ऐसी बूटी दे दो कि मेरे बच्चे में जान आ जाए, लेकिन सब उससे मुंह फेरते रहे। आई वह मेरे भी पास, आई वह मेरे भी पास सांत्वना पाने, मैं भी दे ही क्या सकी उसके लिए सिवाय छोटे से कफन के। जीने के लिए अब बस उसके पास एक ही था सहारा, तीसरा और एकमात्र जीवित बच्चा। उसने उसकी सुरक्षा के लिए पुराने बिल्डिंग का उपेक्षित सा कोना तलाशा, वहाँ वह उसके संग खेलती दौड़ती, उसे पुचकारती, ऊंच नीच समझाती, हर संभावित खतरों से बचाती, अपने स्तन से सींच कर उसे पुष्ट करती। वह बच्चा भी उसी की तरह मासूम और दुलारा था, लेकिन बुरी नज़रें उनका पीछा करती हुई पहुँची वहाँ, वे इंसानों के क्रूर हाथों और तीखी बोलियों का शिकार बार बार होने लगे, बिछौना उनका होने लगा तितर बितर, लोगों की मार और तिरस्कार का उन मासूमों के दिल पर होने लगा असर, बेबस और लाचार होकर दोनों ने फिर एक नया ठौर ढूंढा, लेकिन वह ठंडी और खुली जगह थी जहाँ शीत की लहरों के थपेड़े से बच्चा रात रात भर रोता, वहाँ उसे अपने कलेजे से चिपकाए रखती कि सुबह का उजाला उसे दिखा सके। कुछ ही दिन बीते, उसकी माँ नज़र नहीं आई कहीं, पता चला एनजीओ की टीम उठा ले गई है, एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ी, बच्चा अपनी माँ की ममता से, माँ के जाते ही उस पर पहाड़ टूटा मुसीबतों का, वह बच बचाने की जुगत में चलती कार के नीचे रौंदा गया, कमर की हड्डी टूटी, लाचार बेसहारा वह माँ की ममता को तरसता, दर्द से कराहता गली की सड़क को हमेशा के लिए सोना छोड़ गया। हफ्ता बीतने पर एनजीओ की गाड़ी आई। वाइटी ने गली में कदम रखा। उसकी चाल धीमी हो चली थी। शरीर और चेहरा बदला बदला सा लगा। उसके पेट में लगा था चेहरा टाका। कमज़ोर सी वह उदास बेचैन अपने बच्चे को ढूंढने लगी। कौन बताए उसे, उसके जिगर का टुकड़ा, जीने का अंतिम सहारा उसका अपना छीन लिया गया है। कौन बताए उसे कि अब वह माँ नहीं बन सकती। कभी हो चुकी है उसकी नसबंदी। वाइटी इंसानों की गली में अब भी भटक रही है इधर से उधर, शायद इंसानियत की तलाश में, जो कहीं खो गई है, जो कहीं खो गई है। धन्यवाद।

0: ये हैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत।
1: सुनाती हूँ, ज्यादा भूमिका बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, तो कविताओं के माध्यम से ही बोल। कविता का शीर्षक ही है प्रेम। कुछ घटित हुआ होगा किंतु यह परिभाषित नहीं, जो अंकित है पाषाण में, लिपिबद्ध भी कई ऋचाओं में, झरने से गिरती इकलौती बूंद में भी है, सागर के उफान में, टापू के एकाकीपन में भी, झील के ठहराव में, पुरवाई की शीतलता में भी है, कुमुदनी की पंखुड़ियों में सिमटा है, लंबे रास्ते के मोड़ में दूर दृष्टि लिए खड़ा है, शिव की विशालता में है, बुद्ध के त्याग में है, तुम्हारे माथे के तेज में है, तुम्हारी मुस्कान में है, आंखों की कोर पर टिकी जिजीविषा में है, मेरे अपलक तुम्हें निहारने में है, या एक श्रोतावन वर्षों बिताने की इच्छा में है, किसी स्थान की अपूर्णता में सम्मिलित है, पूर्णता की अवधारणा में है, कली भौरा पतिंगा दीपक समस्त संज्ञा सर्वनाम में है, त्याग तपस्या अर्पण एकीकृत सारे वर्गीकरण में है, अनुरक्ति विरक्ति दोनों में है, व्यक्त है अव्यक्त है, अनिश्चितता की विकलता में है, मेरी कविताओं के प्रथम अभिवादन में है, यह प्रेम ही तो है जो तुम्हारे होने से है। दूसरी कविता भी प्रेम पर ही आधारित है, इसका शीर्षक तय नहीं किया है मैंने। जिन प्रेमियों ने अनिश्चितता में अपनी प्रेमिकाओं का साथ नहीं दिया, उन्हें विरह महसूस होने का अभाव रहा, उनके लिए निरस्त की गई प्रेम कविताएं, संजोए गए सारे प्रेम पत्र जला दिए गए, प्रेम होने के प्रमाण को भी तिरस्कृत किया गया, विदा के वक्त उनके आंसू नहीं ढलके, उनके दिए गए तथ्यों को भी अनुदित नहीं किया गया किसी भाषा में, उनके प्रेम को स्वीकृति नहीं दी गई, पूर्णता अपूर्णता के बीच रिक्त वो कभी नहीं भर पाए, यहाँ तक समय के साथ वो द्रोही कहलाए, प्राप्ति में अपराध बोध घुल गया, त्याग से संतुष्टि की प्राप्ति कचोटने लगी, बाहों का परिमेय कम रहा उनके लिए, सरल और कठिन के बीच वो उलझे रहे, हर बार प्रेम के बदले उन्होंने देह चुनी, हर बार प्रेम के बदले उन्होंने देह चुनी और स्वयं की प्रेमिका को प्रेम से विमुख होते हुए देखा।

0: और लीजिए अब सुनिए रचना पाठ जोशना बेनर्जी आडवाणी का।
1: पहली कविता का शीर्षक है रोटी। रोटी रोटी रोटी रोटी एक तुरही की तरह बजती रही मेरे कानों में। मैंने रोटी को एक उत्सव की तरह सोचा। मैंने देखा रोटी एक लंबी पदयात्रा होने लगी, एक त्राहिमाम, एक आयुहीन ग्रह। इतनी छोटी दिखने वाली रोटी देखते देखते एक महासृष्टि हो जाती है प्रतिदिन। एक घर में कितनी खाई, जितने पेट उतनी खाई। कितनी छोटी हूँ मैं रोटी के समक्ष, कितनी बड़ी है मुझसे एक रोटी की जुगत। पीड़ा, धूप, कंकड़, बाधाएं पहुँची मुझ तक पहले, रोटी पहुँची सबसे अंत में। दूसरी कविता का शीर्षक है एक सहायिका का मरना। एक प्रेमी के मरने से एकदम भिन्न था। एक सहायिका का मरना एक प्रेमी के मरने से एकदम भिन्न था। माता पिता के मरने से भी भिन्न, पालतू बिल्ली और तोते के मरने से तो बिल्कुल ही भिन्न। एक सहायिका जो जानती थी मेरा सबसे पसंदीदा रंग, मेरी सबसे ज़रूरी दवाई तलवों की क्रीम और मेरा सबसे पसंदीदा लजीज नाश्ता, वह मर चुकी है। वह सहायिका जो जानती थी मेरी सबसे मनपसंद किताब का नाम, जो करती थी इतवार को नारियल के तेल की मालिश, जानती थी मेरे चश्मे का नंबर, मन खराब होने पर सुनती थी मैं कौन सा राग, वह सहायिका मर चुकी है। वह उतना नहीं मरी जितना मर जाया करते हैं प्रेमी, और मरने के बाद प्रेम संदेशों, उपहारों और देह पर जमे रहते हैं। माता पिता के मरने जितना भी नहीं मरी, जो अनाथ करके चले जाते हैं। वह इतना भयंकर रूप से मरी है कि उसके हाथ के छापे मेरे पर्दों, किताबों, कपड़ों और रसोई के हर डिब्बों पर पड़े हुए हैं। उसकी खाल अभी तक मेरे तकिए पर लिहाफ की तरह चढ़ी है। वह ऐसे नहीं मरी जैसे मरते हैं पालतू बिल्ली और तोते, जिनके जाने के बाद उनके बर्तनों को छिपा कर रखना पड़ता है। वह तो सब कुछ खुला छोड़ कर मरी है। खुली रसोई, खुला छत, खुली खिड़कियाँ, खुला द्वार, सब कुछ खुला छोड़ गई है ताकि उसकी जगह लेने कोई भी दूसरी सहायिका आ सके। उसे मरने का तरीका नहीं आता था। मरते समय अपना मुंह भी खुला रख छोड़ा उसने। पति से छिपाकर जो कुछ रुपए मेरे पास जमा करवाती थी, वह रुपए भी मुझे टिप में देके मर गई। मैं उन रुपयों का क्या करूँगी ये सोच नहीं पा रही। सहायिका नहीं, वह मेरी मैं थी। मेरे सारे राज छिपाते हुए कहती थी दीदी वो पिक्चर लगाओ, साहिब बीवी और गुलाम। रोने पर दुनिया पर लानत फेंकती हुई कहती थी नाश जाए, आग लगे उसे जिसने मेरी दीदी को रुलाया। घड़ी के पेंडुलम की आवाज़ के साथ उसकी गूंजती आवाज़ अब और तेज़ सुनाई देती है। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही उसका भूत मेरे घर में घूमता है। दालचीनी पाउडर का डिब्बा ना मिलने पर उसका भूत आकर डिब्बा थमा देता है और वो कहती है अब भूत भूत कहकर चिल्लाना नहीं। चिड़कर बहुत समय कहती थी कल से नहीं आऊँगी, काम खत्म नहीं होता इस घर में। अगली सुबह ठीक समय पर दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। एक सहायिका के मरने से कुछ भी नहीं मरता, जीवन पहले जैसा धीरे धीरे हो ही उठता है। एक सहायिका के मरने से जीवित हो उठती हैं पीड़ाएं सभी, और एकांत में नितांत अकेलापन घुसपैठ करता हुआ कहता है क्यों आज फंस गई ना अकेली। एक और कविता है सहेली का प्रेमी। उस दिन प्रकाशन घर से बाहर निकलते हुए सहेली ने बताया उसे प्रेम हुआ है। जिससे प्रेम हुआ है वह चित्रकार है। इतनी चित्रमयता से बताती है प्रेमी की बातें कि पिकासो की वंशज लगती है। रोटी भी प्रतिबिंदु पद्धति के अनुसार बनाने लगी है। सहजन की डंडियों को ऐसे पकड़ती है जैसे पेंटिंग ब्रश। खुशी खुशी रह रहे दो दोस्तों के मध्य एक चित्रकार आ गया है। अकेला नहीं आया, रंग, पैलेट, पानी, कैनवास सब साथ ले आया है। प्रेम हुआ दोस्त को है, प्रेम के साइड इफ़ेक्ट्स के छींटे मुझ पर आकर गिरते हैं। ज़रूरी कार्य करने के लिए फ़ोन करने पर कहती है अभी फ्रीडा कालो की जीवनी पड़ रही है। कब बात हो सकेगी ऐसा पूछने पर कहती है तुम्हारे पास ही तो हूँ, कभी भी बात कर लेना। थोड़ी देर बाद फिर पूछने पर कहती है थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ा दूर हूँ। यह पूछने पर कि कितनी दूर है, कहती है मात्र 7 चित्र दूर। मैं समझ जाती हूँ अभी 7 घंटे तो बात नहीं ही हो सकेगी। मुझे अनसुना और अनदेखा छोड़ दिया गया है। प्रत्येक सुबह हिनहिनाती हुई कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया कल रात। प्रत्येक रात्रि से ठीक पहले कहती है, जो प्रेम में नहीं वह बोझ है धरती पर। मैं अब तक दीवार पर सिर पटकने के किसी सत्यातीत समय में जा पहुंची हूँ। प्रेम में फंसी दोस्त के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। फिर सोचती हूँ, ब्रेकअप के बाद बेतरह टूट कर मेरे पास ही आएगी दोस्त मेरी। एक कविता है जिसका शीर्षक है, स्वप्न टूट कर कहाँ जाते हैं। जिस छोटे लिफाफे में आवेदन पत्र रखकर भेजा था बड़ी नौकरी के लिए, उस लिफाफे में पत्र के साथ एक स्वप्न भी गया था। उल्लू की दृष्टि जो उठी थी ऊपर, उसमें से एक स्वप्न निकलकर उठ चला था आकाश की ओर। एक स्वप्न जो पिता के साथ ही अग्नि में जला, वह अब तक राख नहीं हुआ है। जिस वेग से भागे थे हम अपने स्वप्नों की ओर, उतने ही वेग से टूटे थे स्वप्न। एक स्वप्न तो इतना हटी है कि 100 बार टूटकर भी अपना शीश उठा लेता है। वह स्वप्न जो प्रिया के कटु वचन से टूटा था, वह इतना सहम गया है कि वह हर एक आंख से दूर रहता है। स्मृतियों से सुसज्जित एक स्वप्न अपनी मृत्यु से डरता है, यथासंभव प्रयास करता है कि प्रकृति और शिशुओं के समीप रहे, वहीं सुख पाता है। आयु कितनी है इन स्वप्नों की, कौन दिशा कौन सी प्रजाति इनकी। समुद्र में फेंका मैंने एक स्वप्न, पथों पर अनाज छोड़ा। एक स्वप्न रेल की खिड़की से बाहर उछाला, मिट्टी में दबाया, किताब में छिपाया, बड़ों को प्रणाम करते समय मन में कहा, दस्तखतों में लिखा। सभी टूटे स्वप्न जो मृत पड़े हैं, उनका मुख लावण्य उछला है। वे मरने के बाद भी नवजात से लगते हैं। टूट जाते हैं जो स्वप्न, वे कहते हैं हमसे जन्म देकर अनाथ किया। रिश्तेदार नहीं, सबसे अधिक स्वप्न रोते हैं हमारे मरण पर। हम मर कर चले जाते हैं, स्वप्न मर कर भी हमें छोड़ कर नहीं जा पाते। स्वप्न टूट कर कहीं नहीं जाते, कांधी से पहले टूटे स्वप्न हमें उठाते, चलते हैं हमारे साथ शमशान तक। धन्यवाद।

0: और कार्यक्रम के आखिर में कविता पाठ सुनिए रक्षा दुबे चौबे का।
1: पहली कविता है ऐसे कहना। ऐसे कहना कोई कविता, ऐसे कहना कोई कविता जैसे राह में झरा हो लघुकाय हर सिंगार, कुचल दिया जाए पर सुगंधित कर दे पैरों की धूल। ऐसे छूना दुख किसी का जैसे उमस में ग्रीवा छूकर गुजरती है शीतल हवा। ऐसे विलग होना किसी से जैसे पतझर में गिर जाता है कोई पत्ता और खो जाता है पत्तों के ढेर में ना मालूम। ऐसे करना प्रेम किसी को, ऐसे करना प्रेम किसी को कि कहे के अनुपात में सदा अधिक रहे अनकहा। जहाँ अधिक कहना पड़े, जहाँ अधिक कहना पड़े समझ लेना अधूरी रह गई है कविता पर दुख कातरता विरह और प्रेम। एक कविता है न्यूनतम श्रृंगार। प्रस्थान बिंदु की ओर अग्रसर हैं चरण, इच्छाओं के सघन ज्वार में दुर्बल होते हैं, ठहरते हैं पर दिशा नहीं भूलते। एक रोचक व्यूह में रोज छूटता है कुछ, कुछ न कुछ बचा ले जाती हूँ रोज। एक रोचक व्यूह में रोज छूटता है कुछ, कुछ न कुछ बचा ले जाती हूँ रोज। मन के भीतर जीवित रखती हूँ एक अभिसारिका कि मिलने का कोई वक्त तय नहीं होता, कि मिलने का कोई वक्त तय नहीं होता कि जो प्रेमी आ जाए अचानक सामने तो झोला टंटा सहेजते नख हो बैठूं मिलन के अप्रतिम क्षण का सुख। जीवन का इतना न्यूनतम श्रृंगार कभी धूमिल ना हो, जीवन का इतना न्यूनतम श्रृंगार कभी धूमिल ना हो कि लटपटी में घर से निकलने से पूर्व अंतिम बार दर्पण निहारने पर लज्जा नत हो जाए मुख।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं शहीद भवन में, जहां 30 जुलाई की शाम प्रस्तुति हुई कार्यक्रम रफीनामा की, जिसमें मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: में

90.5 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट में रफीनामा। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में प्रतिदिन आप सुनते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। आइए आपको हम ले चलते हैं शहीद भवन। महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 46वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर गुरुवार को शहीद भवन में रफीनामा सीजन 10 आन मिलो सजना का आयोजन हुआ। मेलोडी जंक्शन एवं सृजन कामना समाज कल्याण एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस संगीतमय संध्या में कलाकारों ने रफ़ी साहब के सदाबहार गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

महर्षि संस्थानों एवं महर्षि विद्या मंदिर विद्यालयों में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भोजपुर मंदिर स्थित ब्रह्मानंद सरस्वती आश्रम के महर्षि उत्सव भवन में आयोजित समारोह में महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह के अध्यक्ष एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मागिरी गिरीश ने ये बताया कि संस्थान में प्रत्येक दिन की शुरुआत गुरु पूजन से होती है और सभी कार्य गुरु की आज्ञा और उनके आदर्शों के अनुरूप किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और समर्पण ही जीवन को सही दिशा देता है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर भुवनेश शर्मा, निदेशक संचार एवं जनसंपर्क विजय रत्न खरे, विद्यालय समूह के कार्यकारी निदेशक प्रकाश जोशी और वैद्य मधुसूदन देशपांडे उपस्थित थे। इधर विजय श्री संगीत विद्यालय के तत्वाधान में आयोजित गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह में मोहन वीणा वादिका साक्षी शिवलीकर ने प्रस्तुति दी। साक्षी ने राग मियां मल्हार की बंदिशें प्रस्तुत की। उन्होंने तानसेन की रचना को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। तबले पर मनोज पाटीदार ने संगत की। कार्यक्रम का आकर्षण मोहन वीणा वादन रहा। इस वाद्य का विकास विश्व मोहन भट्ट ने किया है। संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य जयश्री सवागुंजी ने भी इस कार्यक्रम में गायन प्रस्तुति दी। आइए अब आपको लिए चलते हैं रविंद्र भवन में। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से गुरुवार को रविंद्र भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धा भक्ति और उत्साह से भरे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधकों, श्रद्धालुओं और शहरवासियों ने भाग लेकर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजा और गुरु वंदना पर आधारित भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति से हुई। इसके बाद बड़ौदा से आए भजन गायक गौतम डबीर ने गुरु भक्ति, भगवान शिव और देवी माँ को समर्पित भजनों की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान पूरा सभागार जय गुरुदेव के जय घोष से गूंज उठा। भक्ति संगीत के बाद गौतम डबीर ने फिल्मी गीतों और पारंपरिक गरबा की धुनें भी प्रस्तुत की। इन प्रस्तुतियों पर मौजूद लोग देर तक झूमते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ता रहा। समारोह का समापन भक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण में हुआ। श्रोताओं, सामाजिक कार्यकर्ता और दिव्यांग जन अधिकारियों के लिए काम करने वाली पूनम श्रोति को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले विशेष एट होम समारोह में शामिल होने के लिए ऑफिशियल इनविटेशन मिला है। राष्ट्रपति भवन से भेजा गया आमंत्रण मिलने पर पूनम ने इसे अपने लिए ही नहीं बल्कि दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए काम करने वाले पूरे सामाजिक क्षेत्र का सम्मान बताया। उद्दीप वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक पूनम लंबे समय से दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और सरकारी सेवा में सुगम्यता के मुद्दों पर सक्रिय हैं। पूनम को भारत की 100 प्रेरणादायी महिलाओं में भी सम्मानित किया जा चुका है। और श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं भोपाल शहर में आज कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं जिनमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम में जीटीबी सारेगामा के रनर अप लाइव प्रस्तुति देंगे। गिटार वादक मोहम्मद आरिफ भी इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं ब्रीद एंड बैलेंस की नियमित श्रृंखला गमक के तहत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर युवा सरोद वादक आमिर खां की प्रस्तुति होगी। शास्त्रीय संगीत प्रेमियों को सरोद की मधुर स्वर लहरियां सुनने का अवसर मिलेगा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे से और स्थान रहेगा ब्रीद एंड बैलेंस।

वहीं मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम होगा। भोपाल शहर के रविंद्र भवन में समय होगा 6:30 संध्या से। तो श्रोताओं, आप भी इन कार्यक्रमों में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और संगीत का रस आस्वादन कर सकते हैं। तो ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आज़ाद हिंद।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: नमस्कार श्रोताओ, ये हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओ, भारत में अन्य भाषाओं के साहित्य की तरह हिंदी साहित्य में भी जगमगाते सितारों की कमी नहीं है। हिंदी साहित्य में अगर मुंशी प्रेमचंद का नाम ना लिया जाए तो साहित्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मुंशी प्रेमचंद वो नाम है जिसने हिंदी साहित्य में कहानियों की शुरुआत की, वो भी आम लोगों की बातचीत की भाषा में। उनकी कृतियां भारतीयता की परिचायक हैं, इसीलिए उन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। इनकी कहानियां बड़े घर की बेटी, कफन, पर्दा, ईदगाह, हीरा मोती, पंच परमेश्वर को कौन भुला सकता है। सच कहा जाए तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में शब्द नहीं, छोटे तबके के गरीब और लाचार लोगों की दुखती रगे हैं। वो उस समय के समाज का आईना है। ऐसे महान साहित्यकार के बारे में आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे, तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
2: आदम्भं दम्भारो दम्भा वर्चसि जायतामाराज्ये राजन्यः।
3: वाराणसी की पावन धरती से कुछ दूरी पर लम्ही नामक गांव, जहां मुंशी अजायबलाल अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ रहते हैं। 31 जुलाई 1880, वो दोनों खुश हैं क्योंकि आज उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया है। माता पिता अपने वंश को आगे बढ़ता देखकर खुश हैं, तो एक बहन अपने भाई को देखकर। इस नवजात शिशु को देखने उसके चाचा घर आए हैं।
4: माँ, माँ, मैं भाई को क्या कहकर बुलाऊंगी?
5: तू कुछ भी कह, जो तेरा मन चाहे कह, लेकिन मेरा तो ये जीवन धन है। क्यों जी?
6: सही कहा तुमने, आज से मैं अजायब लाल, इसका नाम धनपत लाल रखता हूँ।
5: लाल नहीं, धनपत राय। ये तो साहूकार बनेगा अपने चाचा की तरह।
4: राय कहने से लगता है कि किसी धन्ना सेठ की बात हो रही है।
7: चाचा की बातें हो रही हैं और चाचा से पूछा भी नहीं कि वो क्या नाम रखेगा अपने भतीजे का। है
6: भाभी, तुम कब आए?
8: अरे भाई लाओ लाओ, इसे मेरी गोदी में दे दो।
7: भाई देखूं तो मेरे भाई अजायब का बेटा अपने बाप पर गया है या अपने चाचा पर है?
6: ये लो, उठाओ इसे गोद में और बताओ तुम।
7: अरे रे रे रे रे, मेरा बेटा तो भाई नवाब जैसा लग रहा है। अरे तू तो मेरा नवाब ज्यादा है। अरे लो, नाम सुनते ही इसने मेरे कपड़े गीले कर दिए। अरे नाम इतना पसंद आया है। चल, आज से मैं तुझे नवाब ही कहूंगा, नवाब। हाँ, तो नवाब जी अपनी लंगोटी बदल लो। हाँ।
3: मुंशी प्रेमचंद के बारे में ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली माँ उनके साथ केवल 7 साल ही रह पाई। माँ की मृत्यु के बाद तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन में दुखों ने घर बना लिया। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ के होने पर उन्हें कभी भी पिता का सुख नहीं मिल पाया। परिवार के सदस्य बढ़ने और उन पर किसी का ध्यान न होने से उनका जीवन अभावों और परेशानियों से भर गया। अगर वो किसी के करीब थे तो सिर्फ अपनी बड़ी बहन के।
5: अरे रे, क्या तोड़ा तूने धनपत, स्कूल से आते ही रसोई में घुस गया।
9: कुछ नहीं माँ, भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था माँ।
5: ओफ, वो छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ छोड़ेगा या सारा खुद ही खा जाएगा?
9: लेकिन माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को।
10: है? नहीं है? हाँ। अरे तो तू खुद बना लेना अपने लिए।
9: मैं कैसे?
4: धनपत, ओ धनपत, इधर आ।
9: हाँ बोलो जी जी।
4: अरे चुप
9: चुप, चुप।
4: बोल मत, इधर आ मेरे पास।
6: क्या हुआ जी जी?
4: ये ले, मैंने गुड़ की पट्टी रखी हुई है तेरे लिए। माँ ने तो छोटे भाई बहनों को खिला दी। हाँ। और जो बाकी की थी ना, वो अपनी अलमारी में ताले में रखी है।
9: दे दो जी जी, दीदी दे दो, बहुत भूख लगी है।
4: ले ना, ये ले, तू खा ले।
9: हाँ, ला।
4: तब तक मैं तेरे लिए दो रोटी बना देती हूँ। हाँ?
10: हाँ। अरे धनपत, रोटी बना रहा है तो अपने लिए एक ही बनाना, अभी बाकी बहन भाइयों ने भी खाना है, आटा और नहीं है।
9: अच्छा माँ।
10: रोटी खा के बर्तन भी धो देना।
9: हाँ माँ।
10: घर का इतना काम है कि समय ही नहीं मिल रहा बर्तन धोने का। मैं तेरे पिताजी के कपड़े धो रही हूँ। हाँ?
9: अच्छा माँ। जी जी, पिताजी से कहूंगा कि मुझे नए जूते ला के दे। देखो ना, मेरे जूते फट गए हैं।
4: कोई फायदा नहीं धनपत, माँ अपने बच्चों के लिए पैसे निकाल लेगी लेकिन हमारे लिए कभी खर्च नहीं करेगी। हम सौतेले हैं ना।
9: हाँ जी जी, अब तो पिताजी भी बस उन्हीं की मानते हैं, उन्हीं की सुनते हैं।
4: तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ ना यहाँ पर तेरी जीजी, मैं तो तेरा ख्याल रखती हूँ ना।
9: हाँ सो तो है जीजी।
4: अब हंस के दिखा।
9: हाँ।
3: अभावों भरी जिंदगी ने प्रेमचंद को हर पल ठोकरें ही दी। वो मात्र नौवीं कक्षा में थे कि उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। प्रेमचंद के न चाहने के बावजूद उन्हें यह विवाह करना पड़ा, पर उनकी पत्नी ने उनसे कभी प्रेम नहीं किया। वो दसवीं कक्षा में थे कि उनके सिर पर एक और पहाड़ टूटा, उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो सारे घर का भार ही उन पर आ गया। उन्हें पढ़ने की चाहत भी थी लेकिन कमाना भी जरूरी था। उनके सहारे उनकी सौतेली माँ और उनके बच्चे भी थे।

0: अब याद करने का काम भी कर लेता हूँ, नहीं तो स्कूल में बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। पहले ये याद करता हूँ।
1: क्या कर रहा है धनपत? रात के 2 बज गए हैं।
0: वो माँ, मैं पढ़ाई कर रहा था।
1: अगर तू पढ़ाई करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तेरे सभी भाई बहन तो अभी बहुत छोटे हैं।
0: एक वकील के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ माँ, 5 रुपए तो मिलते हैं ना उससे। अब और भी ट्यूशन पढ़ा लूंगा, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी माँ।
1: तू इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दे, फिर नौकरी ढूंढ ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा सुन, तेरी पत्नी मायके गई है, आएगी कब?
0: पता नहीं मुझे।
1: उसे छोड़ने तो तू ही गया था ना, ऐसे बार बार मायके क्यों चली जाती है वो?
0: माँ जब आएगी तो उससे अपने आप पूछ लेना।
1: पर वो आएगी कब?
0: मुझे नहीं पता माँ, मुझे पाठ याद करना है, मुझे पढ़ने दे।
1: ओफो, पता नहीं क्या होगा इस घर का।

0: और मुंशी प्रेमचंद ने प्राइवेट इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, साथ ही अध्यापक की नौकरी भी की। उन्हें वाराणसी में चनूर नामक जगह पर अध्यापन कार्य मिला। फिर 1899 में उन्हें गोरखपुर के सरकारी स्कूल में नौकरी मिली, जो उन्होंने 1921 तक की, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने डेप्यूटी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी कार्य किया। जैसे ही 1899 में उन्होंने गांव छोड़ा, उनकी पत्नी भी हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने बीए पास किया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक विधवा महिला शिवरानी देवी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 1909 में उन्होंने उससे विवाह कर दिया। उन दिनों विधवा से विवाह करना समाज में विवाद का विषय था।
1: अरे, तुम तैयार नहीं हुई? विठल भाई के घर विवाह पर नहीं जाना क्या?
2: आप चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी।
1: क्यों?
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: ओफो, क्या काम है?
2: अरे आप जाइए ना।
1: अरे ऐसा कोई काम जरूरी नहीं जिसे छोड़कर तुम मेरे साथ ना जा सको।
2: आप जाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं?
1: क्या हुआ शिवरानी, किसी ने कुछ कहा तुमसे?
2: नहीं, वो हमसे लोग तरह तरह के सवाल। आप जाइए ना।
1: अरे लोग ताने भी देंगे, देने दो। तुम अपना मन खराब मत करो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता ना। देखो, तुम विधवा थी ये भूल जाओ, मैंने तुमसे विवाह किया है और अब तुम मेरी पत्नी हो। इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई सवाल करे तो जवाब मत दो, कोई भी करे, समझ गई ना मेरी बात? अगर किसी ने मेरे सामने तुम्हें कुछ कहा तो उसे मैं अपने आप देख लूंगा। मुझे किसी की चिंता नहीं है शिवरानी, तुम भी परवाह मत करो। देखो, अगर समाज की परवाह करेंगे तो ये समाज हमें जीने नहीं देगा।
2: जी।
1: चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ।
2: जी, अभी हो जाती हूँ।
0: उन दिनों देश में ब्रिटिश राज्य का पूरा बोलबाला था। देश के हालात को देखते हुए उन्होंने उर्दू में छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह निकाला, सोजे वतन। इस संग्रह का असर यह हुआ कि लोगों ने उन्हें एक लेखक की हैसियत से जाना, क्योंकि उनकी कहानियों में ऐसा कुछ लिखा गया जिससे ब्रिटिश लोगों को लगा कि वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उन्हें देशद्रोही तक समझा गया। जमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर बुरी तरह फटकार लगाई और आगे से ऐसा कुछ भी लिखने से मना कर दिया।
3: Wow. What is this? थन पत्राय, क्या है ये सब? सोजे वतन, तुम इंडियंस को अपनी कलम के जरिए भड़काना चाहते हो?
1: नो सर, वो बात।
3: What sir? आर्गुमेंट? पागल हो गए हो तुम? ये सब लिखकर तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका दे रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए।
1: पर सर, हम इंडियन हैं तो।
3: Shut up! Just keep your mouth shut. यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करती है, इंडियन लोग नहीं, और तुम भी सरकारी नौकर हो, अंडरस्टैंड?
1: लेकिन सर,
3: ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हें देशद्रोही मान रही है, यू नो थनपतराय? इस सोजे वतन की सारी कॉपियां मार्केट से उठवा ली गई है।
1: क्या?
3: और सरकारी ऑर्डर हो चुका है कि उन्हें जला दिया जाए।
1: नहीं सर, ऐसा मत करें सर।
3: तुम नौकरी करना चाहते हो या नहीं?
1: सर वो मैं तो।
3: Just shut up and listen to me. अगर तुम्हें नौकरी पर बने रहना है तो तुम्हें आज के बाद राइटिंग बंद करना होगा। दिस इज माई ऑर्डर, नाउ आउट।
0: इस घटना ने तो मुंशी प्रेमचंद के मन में लेखन की इच्छा को और भी भड़का दिया था, इसलिए उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। उस दौर में हिंदी भाषा में केवल राजा रानी की कहानियां ही छपा करती थीं। नॉवल भी लिखे जाते थे पर कहानियां नहीं लिखी जाती थीं। पर आम लोगों को हिंदी भाषा ही अच्छी तरह समझ आती थी। उन्होंने एक फर्जी नाम रखा प्रेमचंद और इसी नाम से हिंदी भाषा में छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की। शुरू में मानसरोवर नामक संग्रह में उनकी कहानियां प्रकाशित हुई। उनकी कहानी ईदगाह में संवेदनाओं का अच्छा चित्रण है।
4: खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने
5: जलेबी ले लो,
6: खिलौने ले लो,
4: जलेबी खा लो, जलेबी।
6: कितने सुंदर सुंदर खिलौने,
5: मीठी मीठी रेवड़ियाँ,
6: ये बालू, ये गुड़िया, ऊपर नहीं, ये तो मिट्टी के हैं सारे। मिट्टी के खिलौने तो जल्दी ही टूट जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं इन्हें हाथ में लेकर तो देख ही सकता हूँ। हाँ, कितने सुंदर हैं, पर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लेना। अरे चिमटा, दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। चिमटा ले लेता हूँ। भैया
4: बोलो,
6: ये चिमटा देना, कितने का है?
4: 3 पैसे का।
6: मेरे पास 3 ही पैसे हैं। ये लो भैया।
4: ला ला।
6: हाँ, चिमटा मिल गया, दादी माँ तो खुश होगी।
7: आ गया मेरे बच्चे। क्या खाया मेले में? क्या क्या था वहां पर? अरे चिमटा, चिमटा खरीदा है तूने मेले से?
6: हाँ दादी।
7: क्या पैसे का मोल लिया रे?
6: 3 पैसे का। अच्छा है ना दादी?
7: हाय अल्लाह, कैसा ना समझ लड़का है रे। पूरा मेला घूमाया, सुबह से दोपहर बीत गई, पर ना खाया ना पिया, सारे पैसे चिमटे में बर्बाद कराया रे।
6: दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, तो इसीलिए मैंने चिमटा लिया।
7: तूने तूने मेरे लिए लिया रे? तुझे मेले में मिठाई खिलौने देखकर भी लालच नहीं आया? तुझे मेरी उंगलियों के जलने की याद रही? मेरा बच्चा, मेरा अमित, मेरा बच्चा।
6: मत रो।

0: उनकी कहानियों में संवेदनाओं और भावनाओं का अंबार रहता था। वो तो जानवरों में भी संवेदनाओं को ढूंढ लेते थे। हीरा मोती दो बैलों की कुछ ऐसी ही कहानी थी।
1: हाँ मोती, इस कांजी हाउस में तो यूं ही मरना है। अरे सोचो, अगर मुझसे ये दीवार टूट जाती तो कितनी जाने बच जाती। ये घोड़े, ये बकरियां, भैंसे और ये ढेंचू करते हुए गधे सभी आजाद हो जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे।
2: अच्छा दुल्ले, मैं तेरे से कमजोर ही सही, पर फिर भी जोर लगा।
1: हाँ लगा, जोर लगा।
2: देख देख देख, दीवार टूटते ही घोड़े बकरियां भैंसे कैसे भाग रहे हैं। देख देख देख, ये गधे चुपचाप कैसे खड़े हैं।
1: अरे गधो, तुम लोग भागते क्यों नहीं? सब तो भाग गए, भागो गधो।
3: अगर कहीं फिर पकड़े गए तो?
1: अरे तो क्या हरज है, अभी तो भागने का मौका है, भागो।
3: अरे ना, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे।
1: अरे मैं कहता हूँ भागो भागो।
3: अरे हीरा हीरा, गधों को छोड़, अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर, मुझसे तो टूट नहीं रही।
1: अरे मोती, मैं तो कोशिश कर चुका हूँ। अरे मेरे भाई, तू जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे, शायद फिर कभी भेंट हो जाए।
3: तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ना ना ना ना।
1: अरे मोती,
0: उन्होंने एक के बाद एक 300 कहानियां लिखी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके मुख्य उपन्यास हैं। उनकी कहानियों में क्लिष्ट भाषा और संस्कृत भाषा का प्रयोग न के बराबर था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने कहानियों के माध्यम से बाल विवाह और बेमेल विवाह रोकने तथा विधवा विवाह पर जोर दिया। वेश्या को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने, पूंजीपतियों और जमींदारों के अत्याचार आदि समस्याओं को उजागर करने में कहानियों और उपन्यासों का सहारा लिया। उनके जीवन का एक पहलू और भी था, वो था सादगी। मशहूर कहानीकार हरिशंकर परसाई ने अपनी कहानी प्रेमचंद के फटे जूते में इसे बहुत ही खूबसूरती से उजागर किया है। वो लिखते हैं,
4: प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने, पैरों में कैनवस के जूते हैं। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है, पर तुम्हें जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा ही विश्वास। अरे भाई, लोग तो मांगे के कोट से वर से दिखाई देते हैं, मांगे की मोटर से अपनी बारात निकाल लेते हैं, पर तुमसे तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। लोग तो इत्र चुपड़वा कर फोटो खिंचवाते हैं, जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, पर तुम भाई, तुम तो फटा हुआ जूता भी बड़ी ही ठाट से पहनते हो, और ऊपर से तुर्रा देखो, बड़े ही ठाट हंस रहे हो, जो अपनी उंगली को छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। तुम्हारी उंगली दिख रही है, लेकिन तुम्हारा तलुआ सही सलामत है। हाँ, समझा, मैं बहुत अच्छी तरह तुम्हारी इस व्यंगात्मक मुस्कान को, तुम्हारे पांव की इस उंगली के इशारे को समझ रहा हूं।
0: सच में मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिया था। उस समय शायद उनकी भावनाओं को गांधी जी ने समझा था। उनके फोन करने पर और कहने पर मुंशी प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से देशभक्ति की भावना फैलाने में गांधी जी के साथ हो गए। उन्होंने मर्यादा नाम की पत्रिका में संपादक का पदभार संभाला और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
4: मुंशी प्रेमचंद ने कई पत्रिकाओं हंस, जागरण, माधुरी आदि का संपादन भी किया। उन्होंने बॉलीवुड के फाउंडर और बॉम्बे टॉकीज के फिल्म डायरेक्टर हिमांशु राय के साथ भी काम किया था, लेकिन मूलतः वो हिंदी साहित्य लेखन से ही जुड़े रहे। उनकी पत्नी शिवरानी ने उनका पूरी तरह साथ निभाया। उनके एक बेटा और बेटी हुए। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ। उनके निधन के कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी ने सन 1944 में मुंशी प्रेमचंद के अनछुए पहलुओं को लेकर उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में प्रकाशित की। उनके बेटे अमृत राय ने उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी, कलम के सिपाही, जो काफी पसंद की गई। उनके उपन्यासों पर कई फिल्में भी बनी।
0: इसके अलावा कई टीवी सीरियल जैसे निर्मला, प्रेम सरोवर, गुलदस्ता और तहरीर आदि भी बने। उनकी कहानियां कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं में भी रूपांतरित हुई हैं। सरकार ने उनके जन्मदिन के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। गोरखपुर के स्कूल जहां उन्होंने अध्यापन कार्य किया था, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई, जिसके बरामदे में एक भित्तिलेख व चित्र लगाया गया है और एक संग्रहालय भी है, जहां उनके साहित्य की सभी पुस्तकों और उनसे जुड़ी वस्तुओं को दर्शाया गया है। मुंशी प्रेमचंद एक लौता नाम है जो समाज के हर तबके से जुड़ा है। उन्होंने कई उभरते लेखकों को नई राह दिखाई। साहित्य के इस दीप्तिमान सूर्य को हम भारतवासी प्रणाम करते हैं। जय हिंद।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़

0: वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
1: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था, जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज़में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
0: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई, जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया। लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
1: और वो बड़ा कैनवास था बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था। बाईस साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
0: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
1: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
0: बलराज साहनी जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
1: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
0: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे। लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
1: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंजे हुए कलाकारों को नहीं लिया, वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज, कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
0: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था, मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी, पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय ही नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
1: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातोंरात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए। लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
0: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
1: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
0: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा जहां असली कला अब भी जिंदा है।
1: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
0: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
1: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
0: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
1: इन हीरों में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब वे मंच पर आती थीं, तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
0: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे। वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे, अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
1: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था, उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
0: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
1: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को चार अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
0: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंचे। वहां यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
1: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरण दास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
0: श्रोताओं, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
1: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा, बल्कि वह विभाजन के दर्द से कराहते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलीशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
0: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
1: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
0: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
1: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
0: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसके कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
1: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
0: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
1: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
0: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 2400 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
1: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए
0: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है, उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
1: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
0: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
1: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है, कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
0: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों के तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
1: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
0: मैं थी आपके साथ स्वाति।
1: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: फिर से अनूप भट्ट हास सिंह नाद होवे, फिर से

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

0: बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई,
1: सांप, वो देखो सांप, वहां भागो, भागो, भागो, सांप, सांप, भागो, भागो, भागो, भागो।
2: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
3: बेटा, बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
4: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
3: बिले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? हाँ, अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था, बोल।
4: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
3: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरे बेटे की रक्षा की है भगवान, ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव।

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो, दूसरों की मदद के लिए बालक नरेंद्र हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेंद्र मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: ए बच्चा, हट जा रे, हट जा, देख नहीं रहा, घोड़ा बेकाबू हो गया है, हटो सब, हट जाओ यहाँ से।
2: अरे गया ये तो, गया, अरे गया,
0: सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
3: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल। ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल।
4: शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली, ना जाने क्या हो जाता आज।
5: वाह, बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
3: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है, चल ना।
0: घर आकर नरेंद्र ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही।
6: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया भगवान। बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था, तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
3: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
6: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा, तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओह बेटा, बेटा मेरा, राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी। गाली गलौच करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: ए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेंद्र उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेंद्र बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम, सेव बोट, फ्रेंड्स, सेव।
2: गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर।
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा,
1: ओके किड, नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ ब्रेव बॉय।
3: थैंक यू, लेट मदर, वेट, गोइंग,
1: बाय बाय,
3: थैंक यू।
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सिरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुंचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूंछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,
4: यहां भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या चाहिए? चलो हटो यहां से, साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये, हट जाओ वहां से।
3: दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना, हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है।
4: कह दिया ना नहीं, अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं, जाओ निकल जाओ यहाँ से, बाद में आना।
3: बाद में मिलकर क्या करूंगा, जहाज तो कल चला जाएगा।
4: तो हम क्या करें, जाएगा तो जाने दो, तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, कह दिया ना, चलो जाओ, सभी जाओ यहाँ से।
3: और लोग भी तो जा रहे हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो?
4: बहस मत करो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, नहीं जाना है तुम्हें, बस।
0: नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग 2 मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया साहब 2 मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथियों से कहा,
3: चलो चलो चलो सब, दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ।
4: बस
3: तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया।
2: दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा, हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा,
3: ये देखो मिल गई ना अनुमति, बड़े आए थे रोकने वाले।
4: ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया बताओ?
3: हम जादू जानता है।
2: सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं।
0: नरेंद्र नाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे, उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
2: हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था,
3: क्यों भाई सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है?
5: नहीं तो?
3: मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी।
2: उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था,
6: जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं वे ही इस प्रकार की ज्योति देख पाते हैं।

0: बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के नेता होते। उनका नेतृत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
2: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे।
3: अरे आगे आदि, इसने तो सब जगह आ गया।
4: ऊपर बच के जाएगा कहाँ?
3: कहीं नहीं जा पाएगा, पकड़ो उसे। वो देखो कूद कर उधर चला गया।
5: हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
2: हा हा हा हा, आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
6: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धागण क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
2: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
1: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेंद्र को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के चलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेंद्र कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
7: अरे नरेंद्र, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया रे, पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
2: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
7: क्यों नरेंद्र, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
2: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
1: वाह रे नरेंद्र, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
0: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज बनाने की ठानी। ट्रेपेज का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे, वे ट्रेपेस बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
2: सेलर।
8: यस सर।
2: हेल्प।
8: ओके।
1: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा।
8: ओह माय गॉड।
1: वो बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए, फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
9: अरे इसका तो सिर फट गया।
6: मर तो नहीं गया?
9: क्या पता, हिल डुल भी तो नहीं रहा।
6: तो अब क्या होगा?
9: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
6: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा।
9: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते हैं। भागो भागो, भागो भागो भागो।
0: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
2: ए ए, कोई पानी लाओ, तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी धोती फाड़ कर पट्टी बना देता हूँ, जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ।
1: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90 दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। दिन के ठीक 12 बजे हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद। श्रोताओं, दोपहरकालीन सभा में आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम तराने आजादी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज़।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना। आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया न जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: .8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं बघेली लोक संगीत। प्रस्तुत कर रही हैं शीला त्रिपाठी।

आज मैं बारिश से संबंधित कुछ चुने हुए बघेली लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बघेली लोकगीतों में सबसे पहले मैं अपनी प्रस्तुति हिंडुली से करूंगी। हिंडुली गीत बारिश जब शुरू होती है तो गांव में महिलाएं जो है धान का रोपा लगाती हैं, उस समय सब मिलकर गाती हैं। मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

अनुसार श्रावण मास में झूले डालने की प्रथा है और हमारे बघेलखंड में भी झूला डलता है और हम झूला गीत गाते हैं। उन्हीं झूला गीतों में से एक झूला गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

हमारे ग्रामीण परिवार में वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है और बारिश के दिनों में केवल घर में महिलाएं ही रहती हैं। तो जो महिलाओं के ऊपर गुजरती है बारिश के दिनों में, खपड़ैल मकान रहते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा।

शंकर के जितने भी रूप हैं उनमें सब में विविधता पाई जाती है, उतनी शायद अन्य किसी देव में नहीं पाई जाती। लोग परंपरा माने भगवान भोला और माँ गौरा के रूप में अपने अपने रूप में किस तरह से प्रकट करता है, आइए सुनते हैं इस श्रृंगार समा

बोनी के बाद बोनी के समय किसान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बारिश होगी तभी हरियाली आएगी और हमारा अन्न फलेगा और फूलेगा। गाय को चारा नहीं मिलेगा तो गाय के बछड़े को दूध भी नहीं मिलेगा। तो मेवा जी, आप बरसों ने धरती नींव जे, दुनिया में होवे शुभ काल, मेवल राजा आप बरसों तो धरती नींव जे।

राखी का त्यौहार आते ही बहनें अपने पीहर को जाने के लिए खुशी और उल्लास के साथ तैयारी करने लगती हैं। उसी खुशी का वर्णन इस गीत में प्रस्तुत है। सुनो हो सहेली ओ अलबेली, सावन महीनो आयुम हरराज, बीरज के राखी बांधागा।

जब सावन के झूले गांवों में बंद जाते हैं, तब सब सखियां मिलकर झूला झूलने जाती हैं। झूला झूलते समय उसे जब डर लगता है, और डर और घबराहट को हम इस गीत में प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं, ओ सहेली झूला चढ़े तो डर लागे हो, मन दूरो दूरो भागे हो।

शादी के बाद ससुराल में जब लड़के को झूला झूलने के लिए उसकी सखियां बुलाने आती है, तब उसे ये संकोच होता है कि झूला झूलने की इच्छा कामना को वो अपने सास ससुर को कैसे बताएं, कैसे कहें कि मुझे झूला झूलना है, मस्ती करना है, खुशियाँ लेना है। तो नदियाँ किनारे झूले बांधे हो कि सैया हमारी झूलवाने आजे हो, तो आई झूला।

बरसात के बाद जब चारों ओर हरियाली छाती है, तब पूरी धरा हरियाली से श्रृंगारित हो जाती है। हर तरफ हरा भरा माहौल होता है। हो हरियाली आंगन छाई, धरती माता को सिंगार, धरती माता को सिंगार, आता जाता की मनवा। अंतिम प्रस्तुति के साथ ये गीत प्रस्तुत है।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने शीला त्रिपाठी से बघेली लोक संगीत सुना और सोनी पवार और उनकी सखियों का बुंदेली लोक गायन। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इजाजत दीजिए प्रमिला को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी

0: नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियाँ वृहदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्री

0: का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है जिसमें चार सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है। यहाँ यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दे कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन हैं, निराकार हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेंपल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है, तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधि है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं। इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही है। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा। सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है, दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं।
0: हाँ।
1: बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियाँ बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की ही तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता, इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं। इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थीं। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गया और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यूं लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाति ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें। ये सफेदे ना सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए, वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए, समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा, सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है। सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो। मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़कर रखे हूं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े, सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो, गंगा की कसम, जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हूं तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा। हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया। हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है,
1: अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं। रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवें तो कहां जाऊं। आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे। वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई। यदि दुर्गा इस समय फटे हाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर ज्यों ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, ये आदमी आपके यहां कितने दिनों से है। यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता। ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेचाता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता, और फलों का तो कहना ही क्या, वे इसके मारे बचते ही ना थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ ना पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई, बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर, इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया। अज्जी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपये प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है, शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपये की आमदनी हुई थी, मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपये हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है, 40 रुपये से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूँ, इन्हीं का सा खाना खाता हूँ और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं।
0: यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए, नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, मेरी फीस में बाधा ना पड़े। और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगुनी तिगुनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी हैं, पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार, राज चर्मकार सब के सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे। उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी, लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं। डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ही रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन।

अब जो बंदिश सुना रहा हूँ इसमें साहित्यिक शब्दों का उपयोग नहीं है। स्वरों को इस प्रकार से गठन किया है, वो शब्द का काम भी करते हैं। ये मन कल्याण में

बोल हैं, नीर गगरी गिरी नार से, नीर नीरे गगरी गगरे गिरी गरे नार नार नीरे सा, सिर सगरी गंगा मग गिर परी, नीर गगरी गिरी नार से।

इस बंदिश की खास बात यही है कि अलग से शब्दों का उपयोग नहीं है, केवल स्वरों को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया है कि वही शब्द का काम भी करते हैं।

अंतिम प्रस्तुति चैती की है जो परंपरागत है। इसके बोल हैं, हथवा लगत कुम्हलाय गईल रामा

आज के इस कार्यक्रम में आपने पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश का।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। शाम के 5 बजे हैं, अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारा प्रसारण यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुने अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 177 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
4: आचर्षणिप्रा वृषभो जनानाम राजा कृष्टीनाम पुरुहूत इंद्रः स्तुतः श्रवस्यन्न वसोप मद्रिग्युक्त्वा हरि वृषणा याहियर वांग। हे इंद्रदेव, आप प्रजाजनों के पालक, शक्तिशाली मनुष्यों के अधिपति और बहुतों द्वारा आवहनीय हैं। आप स्तुतियों से प्रशंसित होकर हमारे यज्ञ की कामना करते हुए संरक्षण साधनों के साथ बलिष्ठ अश्वों को रथ से संयुक्त करके हमारे समीप आए। ये ते वृषणो वृषभास इंद्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्याह ताम आतिष्ठ तेभिरा याह्यर्वांग हवामहे त्वासुत इंद्र सोमे। हे इंद्रदेव, जो आपके पास बलिष्ठ सामर्थ्यवान और संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले घोड़े हैं, उनको रथ में जोतकर रथ में बैठाकर हमारी ओर आए। हे इंद्रदेव, हम सोम अभिश्रवण के समय आपका आवाहन करते हैं। आतिष्ठ रथम वृषणम वृषाते सुतः सोमः परिषिक्ता मधुनि युक्त्वा वृषभ्याम वृषभ क्षितीनाम हरिभ्याम याहि प्रवतोप मद्रिक। हे इंद्रदेव, आप बलशाली रथ पर विराजमान हो, आपके निमित्त शक्ति प्रद सोमरस अभिशुत किया गया है, उसमें मधुर पदार्थों को मिश्रित किया गया है। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आप बलिष्ठ अश्वों को विशेष गति वाले रथ से जोड़कर अपनी प्रजा के समीप जाएं। अयम यज्ञो देवया अयम मियेध इमा ब्रह्माण्ययमिन्द्र सोमः स्तीर्णम बरहिरातु शक्र प्रयाहि पिबा निषद्य विमुचा हरि इह। हे इंद्रदेव, देवताओं को प्राप्त होने वाला यज्ञ, दुधारू पशु, स्तोत्र और सोमरस आपके निमित्त हैं। आपके लिए यह आसन बिछा हुआ है। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, आप समीप आए और यहाँ आसन पर बैठकर सोमपान करें। यहीं पर अपने घोड़ों के बंधनों को खोलें। ओ सुष्टुत इंद्र, याहियर वांगुप ब्रह्माणी मान्यस्य कारोह विद्यामा वस्तो रवसा गृणन्तो विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे इंद्रदेव, भली भांति स्तुत्य आप सम्माननीय स्तोता के स्तवनों को सुनकर हमारे समीप आए। हम नित्य प्रति आपके संरक्षण से आपकी प्रशंसा करते हुए धन संपदा हस्तगत करें और अन्न, बल तथा विजयश्री का दान प्राप्त करें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 177 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

यदि हम दूसरों से अपने प्रति अच्छे व्यवहार की आशा करते हैं, तो सबसे पहले हमें ही दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को सुधारना होगा। यही सच्ची मानवता है।

बाहरी दुश्मनों से लड़ने और उन पर विजय पाने से अधिक जरूरी यह है कि मन के अंदर उपस्थित विकृतियों और पापों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इनसे छुटकारा पाने में ही मनुष्य की असल विजय है।

उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे जायन्ते मृगा। यानी बिना मेहनत के कभी भी कार्य सफल नहीं हो सकते। जैसे कि यदि एक सिंह सोया रहे तो उसके मुख में मृग स्वयं नहीं जाएगा। यानी सफलता के लिए मेहनत अनिवार्य है।

धन की वर्षा होने से भी हमारी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान मनुष्य को ये जानना चाहिए कि सभी कामनाओं की पूर्ति असंभव है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती।

दीन दयाला। अकुशल कर्म तथा अहितकर कर्म करना बहुत आसान है, कुशल कर्म तथा हितकर कर्म करना कठिन है। मगर जो कठिनाई के रास्ते पर चलते हुए सदा दूसरों का भला करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यदि हम चाहते हैं कि हमारा चित्त और हमारी आत्मा सच्चे रूप में जागृत हो, तो इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करने होंगे। कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमें जागृत नहीं

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। यानी जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक ही नहीं है उसका शास्त्र कुछ भी भला नहीं कर सकते। जैसे कि एक नेत्रहीन के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है।

लोभ से ही दुख पैदा होता है, लोभ से ही दर्द पैदा होता है, लोभ से ही ईर्ष्या पैदा होती है, लोभ से ही भय पैदा होता है। यदि हम सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो लोभ को त्यागना होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

0: वेद ध्वनि की पहली लौ हैं, जिससे चेतना ने स्वयं को पहचाना। वेद मात्र ग्रंथ नहीं, वो सृष्टि के अनादि संगीत में उठती एक सूक्ष्म तरंग है। वो किसी ऋषि की थाती नहीं, उस क्षण की स्मृति है जब मनुष्य ने पहली बार आकाश को प्रश्न की तरह देखा और पृथ्वी ने उत्तर में उगाई घास, अग्नि, वाणी, ऋचाएं। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलाधार हैं, हमारी सनातन संस्कृति के वाहक। वेदों और उनकी महत्ता को जब जब धूमिल करने का प्रयास हुआ, तब तब ऐसी विलक्षण विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम किया। वेदों के ऐसे ही सुप्रसिद्ध भाष्यकार थे वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। वेदों के अर्थ और उसके अंतर्निहित भाव का जितना गंभीर अध्ययन सातवलेकर जी ने किया, इसके उदाहरण बिरले ही हैं। उन्होंने सरल हिंदी अनुवाद करके वेदों का जितना व्यापक प्रचार प्रसार किया, वो अतुलनीय है। 20वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति के उन्नयन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वो वेदों के प्रकांड विद्वान तो थे ही, इसके साथ ही वो एक चित्रकार, स्वाधीनता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक भी थे। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का जन्म 19 सितंबर सन 1867 को महाराष्ट्र की सावंतवाड़ी रियासत के पास स्थित कोल गांव में हुआ था। उनके पिता श्री दामोदर भट्ट, पितामह श्री अनंत भट्ट तथा प्रपितामह श्री कृष्ण भट्ट वेदों के मूर्धन्य विद्वान थे। पारिवारिक वातावरण के कारण बचपन से ही बालक श्रीपाद को वेदों का अध्ययन कराया गया। जब वो 8 वर्ष के हुए, तब उनकी विद्यालयीन शिक्षा आरंभ हुई। आचार्य श्री चिंतामणि शास्त्री केलकर ने उन्हें संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी। इस तरह संस्कृत के साथ उनका वेद अध्ययन जारी रहा।
1: प्र पर्वतानामुषति उपस्थादश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाटच्छुतुग्री पयसा जवेते। बंधन से विमुक्त होकर हर्षयुक्त नाद करते हुए दो घोड़ियों की भांति अथवा अपने बछड़ों से सस्नेह मिलन के लिए उतावली, दो गायों की भांति विपाट, व्यास और शुतुद्री सतलज नाम की ये नदियां पर्वत की गोद से निकलकर समुद्र से मिलने की अभिलाषा के साथ प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही हैं। इंद्रेशिते प्रसवम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथ्येव याथः समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे। हे नदियों, आप दोनों इंद्र द्वारा प्रेरित होकर सम्यक रूप से अनुकूलता पूर्वक प्रवहमान हो। हे उज्ज्वला, अपनी तरंगों से सबको तृप्त करती हुई आप दोनों धान्य उत्पत्ति में समर्थ हो। दो रथियों के समान समुद्र की ओर गमन करें। अच्छा सिंधुम मातृतमा मयासम विपाशमुर्वीम सुभगा मगन्म वत्समिव मातरा समरिहाणे समानम योनिमनु संचरन्ति। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हम स्नेह सिक्त मातृतुल्य सतलज नदी के पास गए और विपुल विपाशा नदी के पास गए। बछड़े के प्रति स्नेहाभिलाषिणी गौओं के समान ये नदियां एक ही लक्ष्य स्थान समुद्र की ओर सतत बहती हुई जा रही हैं।
0: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने संस्कृत और वैदिक अध्ययन के साथ ही चित्रकला भी सीखी। दरअसल सन 1887 में एक अंग्रेज अधिकारी वेस्ट्रॉप ने सावंतवाड़ी में चित्रकला शाला शुरू की। यहां गुरु मालवंकर जी से श्रीपाद दामोदर सातवलेकर अत्यंत प्रभावित हुए और उनके भीतर चित्रकारी सीखने की प्रबल भावना जागी। उनके पिता श्री दामोदर भट्ट भी चित्रकला में कुशल थे। इस तरह चित्रकला से उनका जुड़ाव हुआ। सावंतवाड़ी की चित्रकला शाला से चित्रकला सीखने के बाद उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में भी इस कला की बारीकियां सीखी। मूर्तिकला में भी वो अत्यंत कुशल थे। मुंबई में उनकी कला परिमार्जित हुई और उन्होंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। चित्रकारी और शिल्प कला में सर्वोत्तम पुरस्कार मेयो पदक उन्हें दो बार मिला। इसके साथ ही उन्होंने वेदों का

एक स्टूडियो भी बनाया था। वो आर्य समाज के संपर्क में भी आए तथा वेदांत चर्चाओं में भाग लेने लगे। चित्रकारी उनका व्यवसाय था, वेदों का अध्ययन उनकी आस्था और स्वाधीनता संग्राम में सक्रियता उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने वेदों को आधार बनाकर जन जागरण के लिए अनेक लेख लिखे, स्वदेशी पर व्याख्यान दिए। उनका प्रसिद्ध लेख वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता जब छपा तो इसका व्यापक प्रभाव हुआ। बाद में ये लेख तेजस्विता नाम से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। अंग्रेजों ने इस लेख को राजद्रोह की भावना भड़काने वाला माना था, जिसके कारण उन्हें 3 वर्ष कारावास की सजा हुई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वराज का सपना उनकी आंखों में झिलमिलाया करता था।

0: हस्त इषवः पराता भगवो वपा।
1: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का राष्ट्रवादी चिंतन सबकी दृष्टि में था। यही कारण है कि हैदराबाद के निजाम ने उनका विरोध भी किया था। यहां सातवलेकर जी ने विवेक वर्धिनी नामक शिक्षा संस्था भी स्थापित की थी। निजाम की आपत्ति को देखते हुए वो हरिद्वार और लाहौर में कुछ समय बिताने के बाद औंध में भी रहे। यहां उन्होंने स्वाध्याय मंडल की स्थापना की। जब वो वलसाड़ जिले के एक गांव में रह रहे थे तब स्वाध्याय मंडल की पुनः स्थापना भी यहां उन्होंने की थी। वो प्राचीन संस्कृत वांग्मय के परिष्कार और प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न थे। सातवलेकर जी ने लगभग 409 ग्रंथों की रचना की, जिनमें सर्वाधिक प्रतिष्ठा उनके वेद भाष्यों को मिली। आचार्य सायण के वेद भाष्यों के बाद सातवलेकर जी के वेद भाष्य ही सर्वाधिक प्रामाणिक और सटीक माने गए। उन्होंने वेदों के सुबोध भाष्यों की रचना की। उन्होंने सायण भाष्य, जो कि संस्कृत में था, उसके विपरीत सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझ सकें। इस तरह वेदों के गूढ़ ज्ञान को आम जन तक पहुंचाने तथा वेदों के वैज्ञानिक और व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य था। सातवलेकर जी का मानना था कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उनमें जीवन के हर पहलू के लिए ज्ञान मौजूद है। उन्होंने सायण भाष्य की मान्यताओं से हटकर अपनी स्वतंत्र व्याख्या भी प्रस्तुत की, जो उस समय के धार्मिक परिदृश्य में एक नया दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि वेदों का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है तथा समाज के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया।

वेद मूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने वेदों के भाष्य के साथ ही वेदों की मूल संहिता भी लिखी। इसके अलावा अन्य कई ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख हैं वैदिक व्याख्यानमाला, गो ज्ञान कोश, वैदिक यज्ञ संहिता, वेद में कृषि विद्या, वैदिक सर्प विद्या, महाभारत सटीक, संस्कृत पाठमाला, महाभारत की समालोचना आदि। सातवलेकर जी ने छात्रों तथा सामान्य पाठकों के लिए वेदों की भाषा को सरलता पूर्वक समझ सकने योग्य बनाने के उद्देश्य से संस्कृत स्वयं शिक्षक पुस्तक माला भी लिखी थी। उनके द्वारा संकलित वैदिक राष्ट्रगीत एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें राष्ट्र शत्रु का विनाश करने में सक्षम वैदिक मंत्रों का संग्रह है। ये ग्रंथ मराठी और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। यही कारण है कि इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली गई थीं। सातवलेकर जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के कई ग्रंथों का अनुवाद किया था। उन्होंने हिंदी में वैदिक धर्म और मराठी में पुरुषार्थ नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ किया था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। संघ चालक के रूप में उन्होंने अनेक शाखाओं का आरंभ किया। 16 वर्षों तक उन्होंने इसमें काम किया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक जो पुस्तक उन्होंने तैयार की थी, वो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। सातवलेकर जी ने वेदों को स्कूलों में पढ़ाने पर भी बल दिया था। वो कहा करते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज के उत्थान के लिए काम आए। वेदों का ज्ञान केवल पाठ करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने और समाज को अनुशासित बनाने के लिए है। वेदों में वो शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाती है। उनके इस बहुमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया था। 31 जुलाई सन 1968 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सार्थक जीवन का यही संदेश था कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी संस्कृति को समझें और उसे आधुनिक समय से जोड़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करें। ऐसे वेदमूर्ति महामनीषी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आमने सामने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं वाग अर्थ।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं रचना पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आपको लिए चल रहे हैं मुशायरे में
1: कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
2: वाह,
1: शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ।
2: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: ये अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रम यादे बशीर बद्र के तहत।

0: तो आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मुशायरे में।
1: जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे चित्रांश खरे।
2: एक मतलब दो चार शेर देखें कि बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बिछड़ने का इरादा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और शेर सुने कि मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं, मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था, तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। और शेर सुने कि मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था,
1: वाह वाह,
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, शुक्रिया,
1: मुझे
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था। शेर सुने कि तेरे जलवों में बस चिंगारियां थी, तेरे जलवों में बस चिंगारियां थी, मुझे लहजा पुराना चाहिए था, तेरे जलवों में बस चिंगारियां थी, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। और शेर सुने कि नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था। अब थोड़ी बड़ी बहर की तरफ बढ़ता हूँ, ये गजल सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए। बशीर बद्र साहब के साथ मेरा बहुत बैठना उठना रहा है शुरुआती दौर में, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे बशीर बद्र साहब का भी साया मिला, और वसीम साहब के साथ तो मैंने 13-13, 14-14 दिन एक साथ हम लोग रहे और काम किया।
1: क्या बात,
2: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लम्हात हैं ये।
1: क्या बात,
2: सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए। शेर सुने कि दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। और ये शेर सुने कि वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: क्या कहने,
2: वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब पढ़ा आपने। ये थे जनाबे चित्रांश

0: जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे फरहान मंजर।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, बतौर खास समात फरमाइएगा। अर्ज किया है कि तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। बहुत शुक्रिया हजरत, ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया। मेरे तजुर्बे ने कहा यही, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, नवाजिश। वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया, जिसे आंधियों ने बुझा दिया। तो हजरत ये शेर भी समाप्त फरमाइएगा कि तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया।
0: वाह,
1: तेरी एक नजर का कमाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे पार किसने लगा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे तुझे पार किसने लगा दिया, तुझे पार किसने लगा दिया। नवाजिश हो रही है इस गजल का आखिरी शेर के, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतो ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया। रहो उम्र भर, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतो ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया, मेरे घर का किसने पता दिया। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं हजरत। एक गजल पढ़ने से कबल दो चार शेर और आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि बहुत छोटी सी बहर में गजल कहने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए दिल अगर बार बार टूटेगा। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, नवाजिश। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए दिल अगर बार बार टूटेगा, दिल अगर बार बार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका
0: फिर तेरा
1: एतबार, तुझे इंतजार है उसका फिर तुझे इंतजार है उसका फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तेरा एतबार टूटेगा। मतलब पढ़ता हूँ कि उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ न सके मुश्किलात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में। और ये मक्ता पढ़ता हूँ हजरत और आपकी जहमत तमाम के कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, दिखाई दे भी तू हमको वो बात आंखों में, दिखाई दे भी तू हमको। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। दोस्तों ये थे जनाब फरहान मंजर साहब, जिनका कोरवाई से ताल्लुक़ था और अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपको महसूस कर रहे थे।

0: मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री ने कलाम से नवाजा।
1: मतलब अर्ज किया है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है।
0: वाह।
1: दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है। और शेर मुलायजा फरमाए, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इनकार किया जाता है। एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इनकार किया जाता है। मतला चंद शेर और देखें, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। और शेर देखें कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। और मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। कि मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। ये गजल से चंद अशआर और देखें, मतला है कि ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया। कि आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस संत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया।
0: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मतला चंद शेर और देखें, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं।
0: वाह।
1: हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। कि जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। और अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। कि अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। आखिरी गजल से चंद अशआर
0: जी, अशआर
1: मतला अर्ज किया है, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। शेर मुलाहजा फरमाए कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। बहुत शुक्रिया। कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। और शेर की, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना। मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। बहुत शुक्रिया।
0: वाह वाह वाह वाह। ये थी मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा।

0: दरख्त जब कलम बन जाए तो वो जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रूप धार लेते हैं।
1: पेश करता हूं कि दियों का कद घटाने के लिए
0: रातें बड़ी करो,
1: दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, ये क्या जाने, ये सुन के बताइए शेर, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमी का इस्तियारा है। भोपाल में बताने की जरूरत नहीं है, मिसरा पढ़ रहा हूँ कि ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमी का इस्तियारा है, इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना।
0: वाह,
1: इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता।
0: वाह,
1: मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता,
0: जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद, सबको नहीं आता, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो
0: मुलाकातें
1: बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। आइए अब मतलब सुनाता हूँ, पेश करता हूँ कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद।
0: वाह,
1: फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर धड़क जाते हैं बरसातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: आए, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ,
0: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। पेश करता हूँ कि मालिक तेरा करम कि बड़ी लंबी उम्र दी।
0: आहा,
1: सुने बहुवाल, मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी और उस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए।
0: वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी और इस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए। आखिर में तीन चार शेर और सुनाऊंगा, ये भी नई गजल सुनाऊंगा, मतलब सुनिए, बहुत अच्छा सुना है आप, आपने वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी था। अना को राह में आने न देना, अना को
0: राह में आने न देना,
1: आने न देना साहब, वो शायरी ही नहीं होती जो बनाई जाए, शायरी वही होती जो होती है।
0: वाह,
1: आइए, मैं तो एक एक लफ्ज़ का गुलाम हूँ, पूरी जिंदगी एक एक लफ्ज़ मैं तो क्या कह सकता था, बस मुझे उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, लफ्जों ने मुझे कहा।
0: क्या बात है,
1: पेश करता हूँ कि अना के बीच, मैंने अर्ज किया था आपसे कि अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: राह में आने न देना, अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो
0: लौट आना,
1: अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है। गजल वालों, भोपाल वालों, गजल वालों सुनो, कि ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
0: वाह,
1: ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है,
0: बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना
1: बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना
0: क्या कैफियत है सर। हाँ हाँ,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वागर्थ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रचना पाठ।

0: तो आइए सुनते हैं कविताएं। सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं अन्ना माधुरी तिर्की।
1: सभा के प्रारंभ के लिए अन्ना माधुरी तिर्की जी को पुकार रही हूँ, आप आए और हम सब करकल ध्वनि से इनका यहाँ पर स्वागत करें। स्त्री रचनाशीलता समारोह के सुंदर आयोजन के लिए मैं भारत भवन की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी दो रचनाएं पढ़ूंगी, पहली रचना बहुत छोटी होगी, दूसरी थोड़ी बड़ी, आपका ध्यान चाहूंगी। मेरा सच खामोश था, कहा कुछ और था मैंने, कहा कुछ और था मैंने, सुना तूने वही जो पसंद था कानों को। कहा कुछ और था मैंने, सुना तूने वही जो पसंद था कानों को। समझाया भी पर समझा वही, समझाया भी पर समझा वही, जिसमें सहूलियत तुझे, निष्कर्ष वही निकाला जो मन को स्वीकार। अहंकार के पर्दों से ढकी तुम्हारी आँखों ने कागज़ के उस टुकड़े पर किया ही नहीं गौर, थी जिसमें सच की इबारत, शब्दाडंबर से परे मेरा सच उस वक्त खामोश था, शब्दाडंबर से परे मेरा सच उस वक्त खामोश था। इंसानों की गली में कुदरत ने उसके शरीर को सफ़ेद हल्के भूरे रंगों के बालों से सजाया था, वह सुंदर बहुत थी, नाम था वाइटी। दायरा उसका तय था दाईं गली से 30 कदम आखिरी मकान तक, उसके और आगे जाने पर बिरादरी के जानवरों से सताए जाने का भय था। ठौर नहीं था उसका कहीं, गली की सड़क पर ही दिन गुजरता, रात कट जाती वहीं। प्यार से कोई दे दे खा लेती चुपचाप, मिलता जितना खाने को कहीं उससे ज़्यादा लौटाती, सबको दुलारती नेह भरी आँखों से, मोह लेती मन, लाड़ जताती जाने वालों पर, घर लौटने वालों पर छिड़कती जान, बिन पगार गली की करती चौकीदारी। पहली दफ़ा बनी थी वह माँ 3 बच्चों की, तीनों की शक्ल उस जैसी, तब बिजली के खंभे के नीचे डेरा था उसका। कड़कड़ाती ठंड थी, पहला बच्चा चल बसा, दूसरे को आन गली के कुत्तों ने नोच डाला। वह किलकती रही, तड़पती रही, मृत बच्चे को मुंह में दबाए, इस दरवाजे से उस दरवाजे लिए लिए फिरती रही, दुखी मन से लोगों को देखती, ज्यों कह रही हो कि कोई तो ऐसी बूटी दे दो कि मेरे बच्चे में जान आ जाए, लेकिन सब उससे मुंह फेरते रहे। आई वह मेरे भी पास सांत्वना पाने, मैं भी दे ही क्या सकी उसके लिए सिवाय छोटे से कफन के। जीने के लिए अब बस उसके पास एक ही था सहारा, तीसरा और एकमात्र जीवित बच्चा। उसने उसकी सुरक्षा के लिए पुराने बिल्डिंग का उपेक्षित सा कोना तलाशा, वहाँ वह उसके संग खेलती, दौड़ती, उसे पुचकारती, ऊंच नीच समझाती, हर संभावित खतरों से बचाती, अपने स्तन से सींच कर उसे पुष्ट करती। वह बच्चा भी उसी की तरह मासूम और दुलारा था, लेकिन बुरी नज़रें उनका पीछा करती हुई पहुँची वहाँ, वे इंसानों के क्रूर हाथों और तीखी बोलियों का शिकार बार बार होने लगे। बिछौना उनका होने लगा तितर बितर, लोगों की मार और तिरस्कार का उन मासूमों के दिल पर होने लगा असर। बेबस और लाचार होकर दोनों ने फिर एक नया ठौर ढूंढा, लेकिन वह ठंडी और खुली जगह थी जहां शीत की लहरों के थपेड़े से बच्चा रात रात भर रोता, वहां उसे अपने कलेजे से चिपकाए रखती कि सुबह का उजाला उसे दिखा सके। कुछ ही दिन बीते, उसकी माँ नज़र नहीं आई कहीं, पता चला एनजीओ की टीम उठा ले गई है। एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ी, बच्चा अपनी माँ की ममता से, माँ के जाते ही उस पर पहाड़ टूटा मुसीबतों का। वह बच बचाने की जुगत में चलती कार के नीचे रौंदा गया, कमर की हड्डी टूटी, लाचार बेसहारा वह माँ की ममता को तरसता, दर्द से कराहता गली की सड़क को हमेशा के लिए सोना छोड़ गया। हफ्ता बीतने पर एनजीओ की गाड़ी आई। वाइटी ने गली में कदम रखा। उसकी चाल धीमी हो चली थी। शरीर और चेहरा बदला बदला सा लगा। उसके पेट में लगा था चेहरा टाका। कमज़ोर सी वह उदास बेचैन अपने बच्चे को ढूंढने लगी। कौन बताए उसे, उसके जिगर का टुकड़ा, जीने का अंतिम सहारा उसका अपना छीन लिया गया है। कौन बताए उसे कि अब वह माँ नहीं बन सकती। कभी हो चुकी है उसकी नसबंदी। वाइटी इंसानों की गली में अब भी भटक रही है इधर से उधर, शायद इंसानियत की तलाश में, जो कहीं खो गई है। धन्यवाद।

0: ये हैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत।
1: सुनाती हूँ, ज्यादा भूमिका बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, तो कविताओं के माध्यम से ही बोल। कविता का शीर्षक ही है प्रेम। कुछ घटित हुआ होगा किंतु यह परिभाषित नहीं, जो अंकित है पाषाण में, लिपिबद्ध भी कई ऋचाओं में, झरने से गिरती इकलौती बूंद में भी है, सागर के उफान में, टापू के एकाकीपन में भी, झील के ठहराव में, पुरवाई की शीतलता में भी है, कुमुदनी की पंखुड़ियों में सिमटा है, लंबे रास्ते के मोड़ में दूर दृष्टि लिए खड़ा है, शिव की विशालता में है, बुद्ध के त्याग में है, तुम्हारे माथे के तेज में है, तुम्हारी मुस्कान में है, आंखों की कोर पर टिकी जिजीविषा में है, मेरे अपलक तुम्हें निहारने में है, या एक श्रोतावन वर्षों बिताने की इच्छा में है, किसी स्थान की अपूर्णता में सम्मिलित है, पूर्णता की अवधारणा में है, कली भौरा पतिंगा दीपक समस्त संज्ञा सर्वनाम में है, त्याग तपस्या अर्पण एकीकृत सारे वर्गीकरण में है, अनुरक्ति विरक्ति दोनों में है, व्यक्त है अव्यक्त है, अनिश्चितता की विकलता में है, मेरी कविताओं के प्रथम अभिवादन में है, यह प्रेम ही तो है जो तुम्हारे होने से है। दूसरी कविता भी प्रेम पर ही आधारित है, इसका शीर्षक तय नहीं किया है मैंने। जिन प्रेमियों ने अनिश्चितता में अपनी प्रेमिकाओं का साथ नहीं दिया, उन्हें विरह महसूस होने का अभाव रहा, उनके लिए निरस्त की गई प्रेम कविताएं, संजोए गए सारे प्रेम पत्र जला दिए गए, प्रेम होने के प्रमाण को भी तिरस्कृत किया गया, विदा के वक्त उनके आंसू नहीं ढलके, उनके दिए गए तथ्यों को भी अनुदित नहीं किया गया किसी भाषा में, उनके प्रेम को स्वीकृति नहीं दी गई, पूर्णता अपूर्णता के बीच रिक्त वो कभी नहीं भर पाए, यहाँ तक समय के साथ वो द्रोही कहलाए, प्राप्ति में अपराध बोध घुल गया, त्याग से संतुष्टि की प्राप्ति कचोटने लगी, बाहों का परिमेय कम रहा उनके लिए, सरल और कठिन के बीच वो उलझे रहे, हर बार प्रेम के बदले उन्होंने देह चुनी, हर बार प्रेम के बदले उन्होंने देह चुनी और स्वयं की प्रेमिका को प्रेम से विमुख होते हुए देखा।

0: और लीजिए अब सुनिए रचना पाठ जोशना बेनर्जी आडवाणी का।
1: पहली कविता का शीर्षक है रोटी। रोटी रोटी रोटी रोटी एक तुरही की तरह बजती रही मेरे कानों में। मैंने रोटी को एक उत्सव की तरह सोचा। मैंने देखा रोटी एक लंबी पदयात्रा होने लगी, एक त्राहिमाम, एक आयुहीन ग्रह। इतनी छोटी दिखने वाली रोटी देखते देखते एक महासृष्टि हो जाती है प्रतिदिन। एक घर में कितनी खाई, जितने पेट उतनी खाई। कितनी छोटी हूँ मैं रोटी के समक्ष, कितनी बड़ी है मुझसे एक रोटी की जुगत। पीड़ा, धूप, कंकड़, बाधाएं पहुँची मुझ तक पहले, रोटी पहुँची सबसे अंत में। दूसरी कविता का शीर्षक है एक सहायिका का मरना। एक प्रेमी के मरने से एकदम भिन्न था। एक सहायिका का मरना एक प्रेमी के मरने से एकदम भिन्न था। माता पिता के मरने से भी भिन्न, पालतू बिल्ली और तोते के मरने से तो बिल्कुल ही भिन्न। एक सहायिका जो जानती थी मेरा सबसे पसंदीदा रंग, मेरी सबसे ज़रूरी दवाई तलवों की क्रीम और मेरा सबसे पसंदीदा लजीज नाश्ता, वह मर चुकी है। वह सहायिका जो जानती थी मेरी सबसे मनपसंद किताब का नाम, जो करती थी इतवार को नारियल के तेल की मालिश, जानती थी मेरे चश्मे का नंबर, मन खराब होने पर सुनती थी मैं कौन सा राग, वह सहायिका अब मर चुकी है। वह उतना नहीं मरी जितना मर जाया करते हैं प्रेमी, और मरने के बाद प्रेम संदेशों, उपहारों और देह पर जमे रहते हैं। माता पिता के मरने जितना भी नहीं मरी, जो अनाथ करके चले जाते हैं। वह इतना भयंकर रूप से मरी है कि उसके हाथ के छापे मेरे पर्दों, किताबों, कपड़ों और रसोई के हर डिब्बों पर पड़े हुए हैं। उसकी खाल अभी तक मेरे तकिए पर लिहाफ की तरह चढ़ी है। वह ऐसे नहीं मरी जैसे मरते हैं पालतू बिल्ली और तोते, जिनके जाने के बाद उनके बर्तनों को छिपा कर रखना पड़ता है। वह तो सब कुछ खुला छोड़कर मरी है। खुली रसोई, खुला छत, खुली खिड़कियाँ, खुला द्वार, सब कुछ खुला छोड़ गई है ताकि उसकी जगह लेने कोई भी दूसरी सहायिका आ सके। उसे मरने का तरीका नहीं आता था। मरते समय अपना मुंह भी खुला रख छोड़ा उसने। पति से छिपाकर जो कुछ रुपए मेरे पास जमा करवाती थी, वह रुपए भी मुझे टिप में देके मर गई। मैं उन रुपयों का क्या करूँगी ये सोच नहीं पा रही। सहायिका नहीं, वह मेरी मैं थी। मेरे सारे राज छिपाते हुए कहती थी, दीदी वो पिक्चर लगाओ, साहिब बीवी और गुलाम। रोने पर दुनिया पर लानत फेंकती हुई कहती थी, नाश जाए, आग लगे उसे जिसने मेरी दीदी को रुलाया। घड़ी के पेंडुलम की आवाज़ के साथ उसकी गूंजती आवाज़ अब और तेज़ सुनाई देती है। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही उसका भूत मेरे घर में घूमता है। दालचीनी पाउडर का डिब्बा ना मिलने पर उसका भूत आकर डिब्बा थमा देता है और वो कहती है, अब भूत भूत कहकर चिल्लाना नहीं। चिड़कर बहुत समय कहती थी, कल से नहीं आऊँगी, काम खत्म नहीं होता इस घर में। अगली सुबह ठीक समय पर दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। एक सहायिका के मरने से कुछ भी नहीं मरता, जीवन पहले जैसा धीरे धीरे हो ही उठता है। एक सहायिका के मरने से जीवित हो उठती हैं पीड़ाएं सभी, और एकांत में नितांत अकेलापन घुसपैठ करता हुआ कहता है, क्यों आज फंस गई ना अकेली। एक और कविता है सहेली का प्रेमी। उस दिन प्रकाशन घर से बाहर निकलते हुए सहेली ने बताया उसे प्रेम हुआ है। जिससे प्रेम हुआ है वह चित्रकार है। इतनी चित्रमयता से बताती है प्रेमी की बातें कि पिकासो की वंशज लगती है। रोटी भी प्रतिबिंदु पद्धति के अनुसार बनाने लगी है। सहजन की डंडियों को ऐसे पकड़ती है जैसे पेंटिंग ब्रश। खुशी खुशी रह रहे दो दोस्तों के मध्य एक चित्र

चित्र दूर। मैं समझ जाती हूँ अभी 7 घंटे तो बात नहीं ही हो सकेगी। मुझे अनसुना और अनदेखा छोड़ दिया गया है। प्रत्येक सुबह हिनहिनाती हुई कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया कल रात। प्रत्येक रात्रि से ठीक पहले कहती है जो प्रेम में नहीं वह बोझ है धरती पर। मैं अब तक दीवार पर सिर पटकने के किसी सत्यातीत समय में जा पहुंची हूँ। प्रेम में फंसी दोस्त के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। फिर सोचती हूँ ब्रेकअप के बाद बेतरह टूट कर मेरे पास ही आएगी दोस्त मेरी। एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वप्न टूट कर कहाँ जाते हैं। जिस छोटे लिफाफे में आवेदन पत्र रखकर भेजा था बड़ी नौकरी के लिए, उस लिफाफे में पत्र के साथ एक स्वप्न भी गया था। उन लोगों की दृष्टि जो उठी थी ऊपर, उसमें से एक स्वप्न निकलकर उठ चला था आकाश की ओर। एक स्वप्न जो पिता के साथ ही अग्नि में जला, वह अब तक राख नहीं हुआ है। जिस वेग से भागे थे हम अपने स्वप्नों की ओर, उतने ही वेग से टूटे थे स्वप्न। एक स्वप्न तो इतना हटी है कि 100 बार टूटकर भी अपना शीश उठा लेता है। वह स्वप्न जो प्रिया के कटु वचन से टूटा था, वह इतना सहम गया है कि वह हर एक आंख से दूर रहता है। स्मृतियों से सुसज्जित एक स्वप्न अपनी मृत्यु से डरता है, यथासंभव प्रयास करता है कि प्रकृति और शिशुओं के समीप रहे, वहीं सुख पाता है। आयु कितनी है इन स्वप्नों की, कौन दिशा कौन सी प्रजाति इनकी। समुद्र में फेंका मैंने एक स्वप्न, पथों पर अनाज छोड़ा। एक स्वप्न रेल की खिड़की से बाहर उछाला, मिट्टी में दबाया, किताब में छिपाया, बड़ों को प्रणाम करते समय मन में कहा, दस्तखतों में लिखा। सभी टूटे स्वप्न जो मृत पड़े हैं, उनका मुख लावण्य उछला है। वे मरने के बाद भी नवजात से लगते हैं। टूट जाते हैं जो स्वप्न, वे कहते हैं हमसे जन्म देकर अनाथ किया। रिश्तेदार नहीं, सबसे अधिक स्वप्न रोते हैं हमारे मरण पर। हम मर कर चले जाते हैं, स्वप्न मर कर भी हमें छोड़ कर नहीं जा पाते। स्वप्न टूट कर कहीं नहीं जाते, कांधी से पहले टूटे स्वप्न हमें उठाते, चलते हैं हमारे साथ शमशान तक। धन्यवाद।

0: और कार्यक्रम के आखिर में कविता पाठ सुनिए रक्षा दुबे चौबे का।
1: पहली कविता है ऐसे कहना। ऐसे कहना कोई कविता, ऐसे कहना कोई कविता जैसे राह में झरा हो लघुकाय हर सिंगार, कुचल दिया जाए पर सुगंधित कर दे पैरों की धूल। ऐसे छूना दुख किसी का जैसे उमस में ग्रीवा छूकर गुजरती है शीतल हवा। ऐसे विलग होना किसी से जैसे पतझर में गिर जाता है कोई पत्ता और खो जाता है पत्तों के ढेर में ना मालूम। ऐसे करना प्रेम किसी को, ऐसे करना प्रेम किसी को कि कहे के अनुपात में सदा अधिक रहे अनकहा। जहाँ अधिक कहना पड़े, जहाँ अधिक कहना पड़े समझ लेना अधूरी रह गई है कविता पर दुख कातरता विरह और प्रेम। एक कविता है न्यूनतम श्रृंगार। प्रस्थान बिंदु की ओर अग्रसर हैं चरण, इच्छाओं के सघन ज्वार में दुर्बल होते हैं, ठहरते हैं पर दिशा नहीं भूलते। एक रोचक व्यूह में रोज छूटता है कुछ, कुछ न कुछ बचा ले जाती हूँ रोज। एक रोचक व्यूह में रोज छूटता है कुछ, कुछ न कुछ बचा ले जाती हूँ रोज। मन के भीतर जीवित रखती हूँ एक अभिसारिका कि मिलने का कोई वक्त तय नहीं होता, कि मिलने का कोई वक्त तय नहीं होता, कि जो प्रेमी आ जाए अचानक सामने तो झोला टंटा सहेजते न खो बैठूं मिलन के अप्रतिम क्षण का सुख। जीवन का इतना न्यूनतम श्रृंगार कभी धूमिल न हो, जीवन का इतना न्यूनतम श्रृंगार कभी धूमिल न हो कि लटपटी में घर से निकलने से पूर्व अंतिम बार दर्पण निहारने पर लज्जा न थो जाए मुख।

0: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: दोस्तों नमस्कार, आमने सामने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, रंगकर्मी और नया थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगीन तनवीर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
3: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।
2: आपने बचपन से हबीब तनवीर जी को केवल एक महान रंग निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी देखा है। और इन सब से इतर नगीन जी बहुत ज्यादा अपने भीतर लोक गायकी के एसेंस को छुपाए हुए हैं, हमें जब तब उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाती है। आपका बहुत स्वागत है नगीन जी स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँ तो वो ये कि नगीन तनवीर खुद नगीन तनवीर को कैसे परिभाषित करेंगी?
4: कलाकार के तौर पर और एक सच्ची साधक के तौर पर।
2: वाह, तो ये साधना आपकी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं और जब भी आपको सुना है स्टेज से तो हर बार लोक गायकी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। तो क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी आवाज़ में कुछ सुन सकते हैं?
4: मैं एक बहुत पुराना पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाऊंगी जो फिल्मों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑथेंटिक जो जैसा था वैसा मैं पेश कर रही हूँ।
2: जी।
4: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनना, आंखें बंद कर ली जाए और आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की माटी में। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सिक्स का ये गाना हम लोगों ने तो बिल्कुल खड़ी हिंदी में ही सुना है, लेकिन आपके मुंह से लोक भाषा में लोक रंजित तरीके से सुनना बहुत आनंददायक था। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि हबीब तनवीर जी को अपने आप में रंग धर्म का, रंग कर्म का विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी विरासत के साथ जब आप रहते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जब आप रहते हैं, तो शेडो इमेज का भी एक कहीं ना कहीं असर आ जाता है। आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि पिता मेरे एक बरगद के पेड़ जैसे थे
0: जी,
1: तो उसके प्रभाव में मैं थी। और पहले ऐसा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है
0: जी।
1: अब अपनी मेरी खुद की पहचान अब बन रही है, इसलिए कि इतना उनका ऑरा था ऊर्जा का और रौब भी था। और ये मैंने देखा है कि एकाग्रता, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। उसी ऊर्जा से लोग मतलब कांपते भी थे, डरते थे और हिचकिचाते थे। उसी ऑरा का असर मुझ पे भी पड़ा, ऊर्जा का असर। और जैसे कि मैंने कहा कि बरगद के पेड़ जैसे थे, आपने कहा ना कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन विश्वविद्यालय थे, तो बरगद का पेड़ सबको समा लेता है, वैसे ही थे हबीब साहब। बहुत सालों तक उस प्रभाव में मैं झुकी रही कह सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन अब वो बदल गया है कुछ सालों से।
0: जी जी जी। आपकी माँ मोनिका मिश्रा जी खुद बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थीं। आपको क्या लगता है हबीब तनवीर जी के रंग कर्म, नया थिएटर और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा में मोनिका मिश्रा जी का क्या हाथ देखती हैं आप?
1: मोनिका मिश्रा जी को पूरी तालीम थी अमेरिका से, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन जब उनका विवाह हुआ हबीब साहब के साथ, तो उनको लगा कि ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया, वरना ईगो क्लैश होता ज़बरदस्त, तो एक कदम पीछे कर लिया। और फिर वो बैक स्टेज काम संभालती थी, प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम, और पहले रोल भी कराए हबीब साहब ने उनको, तो रोल करती थी, बहुत अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पीछे वो हट गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो एक टीम वर्क जैसे काम करने लगे। हबीब साहब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी, वो सारे टिकट छपवाती थी, इनविटेशन कार्ड्स छपवाती थी, पासेस, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले हुआ करता था दिल्ली में, सिस्टम था वो सब, दौड़ भाग का काम वो करती थी, पब्लिक बस में जाके ये सब करती थी। तो दे वर्क लाइक अ टीम। और ये पहली मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में
0: जी
1: ऐसी टीम वर्क की। और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए बगैर उनके सलाह मशवरा के बगैर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते थे हबीब साहब, चाहे वो डायरेक्शन का कुछ काम हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी हो या स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट हो, संवाद हो, हर चीज़ में मोनिका मिश्रा जी को दखल था। हर चीज़ में उनसे सलाह लेते थे कि ये मोनिका ये ठीक है कि नहीं है
0: जी।
1: तो कभी कभी वो मान लेते थे उनकी बात, और जब उनको वो आइडिया पसंद नहीं आता था तो उनसे कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप मतलब दूसरा रास्ता अपनाते थे, दूसरा जो उनको ठीक लगता था
0: जी,
1: और कहते नहीं थे कुछ उनसे
0: जी।
1: तो मोनिका मिश्रा जी समझ जाती थी कि अब ये मेरा ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत था, उसको कबूल कर लेना, उस पे बहस ना करना, तर्क ना करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
0: आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं नगीन जी, क्योंकि हम जब और बच्चों की परवरिश देखते हैं तो भाई पढ़ाई करो, उठो, चलो स्कूल जाना है, लेकिन हबीब साहब का तो अपने आप में कभी कहीं उनका थिएटर का प्रस्तुति होनी है, कभी कहीं जाना है, मतलब कहते हैं ना कि मुकाम से ज़्यादा सफ़र में कुछ लोग रहते हैं, तो आप कभी बहुत समय सफ़र में गुजरा होगा, आप भी हबीब साहब के साथ इधर उधर काफ़ी जाती रही हूँ, कैसा रहा आपका बचपन?
1: सबसे पहली स्मृतियाँ तो वो हैं करोल बाग की, कि किराए का घर था और ऊपर छत पे बरसाती थी, वहाँ सब ट्रंक्स थे थिएटर के, वहीं पे एक वो नल की टोटी थी पीतल की, वहीं पे 8-10 छत्तीसगढ़ी वहाँ रहते थे और वहीं नहाते थे, खाना पकाते थे चूल्हे पर। पहले तो ये स्मृति रही। फिर जब हबीब साहब संसद सदस्य बने राज्यसभा, तो हमारी अम्मा तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ना है तुम्हें, होमवर्क करना, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में मुझे तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी बहुत अच्छी है, नाच और गाना, गाना और नाच। फिर वो पढ़ाती थी, कहती थी कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ियों के पास जा रही हो, 1 घंटे में वापस आना है, ये फला चैप्टर करना है, ये होमवर्क करना है। बहुत सख्त थी वो। तो हम टूर में नहीं जाते थे, वो मेरे साथ रुकती थी घर में। फिर कॉलेज डेज में फिर मैं टूर में जाने लगी, लेकिन जब तक स्कूल था मैं कोई टूर में नहीं जाती थी और अम्मा भी नहीं जाती थी। दिल्ली से बाहर अगर टूर हुआ, वो पढ़ाती थी तो वो समर्पित थी मेरे प्रति कि भाई बच्ची को पास होना, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था, और क्या खिलाना है बच्ची को, भाई गिज़ा कि भाई बच्ची थक भी जाती है और ये हो। तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी हमारी अम्मा।
0: आपकी संगीत की तालीम भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हुई है, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
1: मैं 8 साल की थी तब शर्वरी मुखर्जी, उन्होंने सिखाया 2-2.5 साल, स्कूल में पढ़ाती थी वो, बड़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मंदिर से कोई स्कल्पचर तराशी हुई निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर जब वो नहीं सिखा पा रही थी तो उनकी जो गुरु थी उस्तानी दीपाली नाग, मतलब दीपाली तालुकदार, जो डॉक्टर बीडी नाग चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने स्वयं फैयाज खान साहब से तालीम ली थी आगरा घराना, फिर उनके अंडर मैंने संगीत प्रभाकर विशारद 6 साल का वो किया
0: जी
1: स्कूल के जमाने में। फिर बड़ौदा चली गई, माँ बाप पूछ रहे थे कि अब कौन से कॉलेज में डालें, इसको तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो दीपाली माशी बुलाते थे हम, तो वो कहने लगी कि बड़ौदा सबसे अच्छी जगह है। बड़ौदा गई, वहाँ 4 साल रही, फिर गुरु की तलाश थी। तो एक हमारे नया थिएटर में थे, वो चेलो प्लेयर थे ऑल इंडिया रेडियो में, ए ग्रेड आर्टिस्ट ज्ञान शर्मा, उन्होंने कहा हमारी अम्मा से, मोनिका सुलोचना बृहस्पति जी से सिखवाओ इसको। तब हमने सुलोचना बृहस्पति जी से 8-10 साल तालीम ली
0: जी,
1: सदरंग रामपुर सदरंग परंपरा
0: जी।
1: फिर यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए, फिर गुंदेचा बंधु से तालीम ली 6 साल
0: जी,
1: उनसे तालीम ली। फिर किसी ने कहा कि तुम फोक गाती रही हो तो क्यों ना तुम ठुमरी तालीम लो, इसलिए कि वो सबसे नज़दीक है लोक संगीत के, और लोक संगीत का पॉलिश्ड रूप ठुमरी गायन है
0: जी।
1: तो पूर्णिमा चौधरी जो बनारस घराने की हैं, महादेव मिश्रा जी की प्रथम शिष्या, बहुत अच्छी शिष्या, उनसे सीखो। तो मैं कलकत्ते जाती थी साल में 3-4 बार उनसे तालीम लेने, 2 साल उनसे तालीम ली ठुमरी तालीम, 2-3 साल वो चली
0: जी
1: इस तरह से।
0: अब ठुमरी की बात चल रही है और नगीन जी के मुंह से कुछ सुना ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए इसे थोड़ा और सुरमय बनाते हैं इस बातचीत को। बीच बीच में बताइए क्या सुना रही हैं आप।

0: जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो लगता है जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर सपने से जगा दिया हो। नगीन जी, आप बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार आपके कॉन्सर्ट में मैं पहुँची थी और वहाँ पर आप गा रही थी गए दिनों का सुराग लेकर, इधर से आया उधर गया वो, और शायद बहुत से लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, पर वहाँ मेरे आसपास बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और शायद ईश्वर के उतनी ही नज़दीक भी, इसलिए लोगों को वो बहुत जल्दी छू जाती है। नगीन जी, हम वापस लौट आए हैं आपकी गायकी से। आपने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, फिल्मी जगत के लिए भी गाया है, उस अनुभव को कैसे देखती हैं आप?
1: पहली बार मौका मिला था तो अनुषा रिजवी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने कहा नगीन मुझे तुम्हारा गाना चाहिए और चोला माटी जरा गा के सुनाओ, फोन पे बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने गा के सुनाया। उन्होंने कहा इसको हम एक फिल्म में इस्तेमाल करेंगे जो मेरी फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस हैं, प्रोड्यूसर आमिर खान हैं, तुम गाना चाहोगे? मैंने कहा वाह, ये तो चांदी हो गई, क्यों नहीं। और जिस साल बाबा का इंतकाल हुआ था उसी साल जून में उनकी मौत हुई और दिसंबर 2009 में बांद्रा में स्टूडियो बुक हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग हुई पीपली लाइव के लिए। चार पांच टेक्स के बाद रिकॉर्डिंग हुई, फाइनलाइज हुई और सब लोगों ने बहुत सराहा और बहुत कि बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है। तो वो एक गाने ने मुझे बिल्कुल मशहूर कर दिया।
0: तो वो एक गाना जो है आपका वो हमको सुनवा दीजिए, तो हमारे श्रोताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गीत है।
1: चोला माटी तो जीवन दर्शन है और लव्स लिखे थे गंगाराम सिवारे ने जो एक लोक कवि थे बहुत अच्छे
0: जी,
1: और मंडला की ये आदिवासी धुन है पारंपरिक
0: जी।

द्रोणा जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी संगी कारण जैसे दानी बाली जैसे

0: बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब जब जब किसी को गलत फहमी हो और वो इस जीवन दर्शन से परिचित हो जाए तो अपने आप जमीन पर लौट आएगा। मैं वापस नया थिएटर की तरफ जाना चाहूँगी कि उसको कई लोग कहते हैं कि हबीब साहब बहुत प्रयोग करते थे नया थिएटर में, कहना चाहिए कि रंगमंच की प्रयोगशाला ही थी वो। आप इन चीज़ों को कैसे बताना चाहेंगी विस्तार से?
1: पहली चीज़ तो ये है कि जितने लोक नाट्य धर्म शैली के हैं हिंदुस्तान में फोक थिएटर्स, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत रहता है आशु रचना का। तो हरियाणा में स्वांग शैली कहलाती है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, और राजस्थान में भी शैली है वहाँ भी होता है, और एक और क्षेत्र में काम किया गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। तो उसमें कहाँ लोकनाट्य धर्म और कहाँ क्लासिकल, इतनी बारीक लकीर थी कि पता नहीं चलता था। तो इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए के फोक एक्टर्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजर्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यंग का पहलू, इसलिए के हसोड़ हैं, तो व्यंग का पहलू, सटायर जिसे कहते हैं, वो कूट कूट के भरा हुआ है। हल्की एक्टिंग, व्यंग्यात्मक, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल, ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे। तो इम्प्रोवाइजेशन, फिर किताबें उन्होंने खरीदी यूरोप से, इंग्लैंड से, इम्प्रो, तो उसको स्टडी करते थे, पढ़ते थे, और फिर देखते थे। दक्षिण भारत भी जाके उन्होंने कुडियाट्टम, ऐसे बहुत सारी शैलियाँ देखी हिंदुस्तान में, गुजराती थिएटर देखा, पारसी थिएटर में, मराठी थिएटर देखा, सब कुछ, और फिर क्या अमल हो सकता है मेरे थिएटर में, ये उन्होंने खूब मंथन किया, पढ़ा, जो विलायत से किताबें लाए थे, और देखा, फिर खुद का मंथन चला, फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, इस पे मंथन भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इम्प्रोवाइजेशन, उसी में ड्रामे बने हैं
0: जी,
1: और उसी से इम्प्रोवाइजेशन के तरीके से ही स्क्रिप्ट का गठन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई, संवाद। तो वो समझा देते थे कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ी मंडली को ये है कहानी, इसको तुम लोग आपस में बात कर लो, आधा घंटा 45 मिनट ले लो और मुझे करके दिखाओ। तो वो दिखाते थे, करके दिखाते थे, तो फिर कहते थे फिर से आपस में बातचीत करो और दोबारा करके दिखाओ। खुद भी मेहनत करते थे, दूसरों से भी खूब करवाते थे, उनको लगता था कि अब मुझे दखल देना है, तब वो दखल देते थे। शुरुआत में ये हुआ कि शुरू शुरू में जब छत्तीसगढ़ी मंडली बनी 1970-71 में, तो शहरी और छत्तीसगढ़ियों को मिला जुला रूप उसे ड्रामे होते थे, मसलन आगरा बाजार, लेकिन फिर वो हिंदी के संवाद उनको कहते थे कि ये बोलो, तो वो बहुत, कहीं उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता था, वो नहीं बोल पाते थे, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था हबीब साहब के इनको जब ग्रामीण नाचा थिएटर में देखा तो बेबाक होके एक्टिंग कर रहे, यहाँ ये कौन सी चीज़ है जो रुकावट डाल रही है। बहुत धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि हिंदी में बुलवा रहा हूँ, इसलिए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि भाई यही संवाद तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो। उसमें फिर रौनक आ गई और रोशनी आई, तो फिर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि अब मैं छत्तीसगढ़ी में करूँगा। उनको समझ में आया कि ये जो क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही है उनके जहन में कलाकारों के, ये भाषा की वजह से आ रही है। फिर जब सही तरीका मिल गया ना, तो फिर वो फॉर्मूला बन गया, फिर उसी ढर्रे से वो चलते थे। अगर उनको लगता था कि कुछ कमी है तो कुछ पढ़ लेते थे, किताब ढेरों किताबें खरीदते थे विलायत से, पढ़ते थे, फिर सोचते रहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि फैमिली थिएटर जैसे था, और जब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को देखा दिल्ली वालों ने, तो उनको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया, बहुत कठिन था, अफिल टास्क था, बहुत संघर्ष किया, हर कदम पे संघर्ष था, लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन गया, तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है H2O, वैसे उन्होंने परंपरा जड़ों से चीजें ली और उनको हूबहू ऐसे ही पेश कर देना, नहीं, वो कैसे इस ड्रामे में फिट होती हैं, वो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम, तो कैटलिस्ट का काम किया। अंदर दिल और दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ
0: जी,
1: और फल की कभी चिंता नहीं की। वो फल जब मिला तो छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। तो ये बहादुरी से चलते रहे, दृढ़ता पूर्वक चलते रहे।
0: अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है, वो कितना सच है ये तो आज आप ही बताएंगी, कि हबीब साहब को जब जरूरत होती थी कि मंच पर कोई सब्जी वाला आ जाए तो सब्जी वाले को बुला लेते थे, और मंच पर जब कोई चौकीदार की जरूरत हो तो चौकीदार को बुला लेते थे। इसमें कितनी सच्चाई है
1: भाई। 1954 में जब आगरा बाजार तैयार हुआ फुल फ्लेजेड ड्रामा
0: जी,
1: तो एक बटला हाउस था, एक मतलब फूस की छत थी उसकी, उसको बटला हाउस कहते थे जामिया मिल्या में। हाँ। और जामिया बिल्कुल जंगल ही था, और ओखला के बाजार वालों को लिया
0: जी।
1: और एक गधे को भी लिया, और गधे ने स्टेज पे लीड कर दी। तो बाजार का सिर्फ नजारा नहीं, बाजार की खुशबुएं बदबुएं सब उसमें प्रोडक्शन में। और फिर बाद में उन्होंने पाया
0: जी
1: कि ऐसे काम नहीं चलेगा, द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड इन एक्टिंग, वरना किसी को भी खड़ा कर दो स्टेज पे सब्जी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर
0: मुझे लगता है ना कभी हुआ ना होगा कि गधा भी मंच पर आया हो। ये बहुत अच्छा।
1: फिर जब रिवाइव हुआ 1970 में आगरा बाजार
0: जी,
1: तो फिर हुनरमंद प्रतिभाशाली कलाकारों को, एक्टर्स को ही लिया
0: जी। हाँ, देखिए ना, तो इतने सालों बाद भी आज उनकी बात हो रही है, और उन्हें थिएटर का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो शायद उसमें यही सब बातें रही होंगी कि इतने प्रयोग, आप देखिए कहाँ मुनासिब है कि लोग इतने प्रयोग करें और उसे मंच तक ले आएं, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो नज्म कौन सी थी आपके मुंह से आज लाइव हम सुनेंगे जी?
1: नजीर अकबरावादी की है, सरापा कहते हैं उसे, सरापा यानी सर से लेके पैर तक पूरा नायिका का वर्णन
0: जी।
1: तो मैं पहला बंद गाऊंगी, करिश

0: सी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और शौक है जो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को पता लगे। नगीन जी रंगों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है और अब वो भारत भर के हैंडलूम को, स्पेशली साड़ियों को बहुत पसंद करती हैं। और हालांकि पता नहीं उनको ये सवाल कैसा लगेगा,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: बहुत
1: श्रोताओं
0: अच्छा।
1: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि नृत्य से, लोक गायकी से उनका बहुत संबंध रहा है और थिएटर में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में ये चुनाव करते करते नगीन जी आपको किसी खूबसूरत साड़ी की तलाश में बाजार में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। नगीन जी, आपके सारी बातों को करते हुए आज बहुत आनंद आया। बस चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक कोई भी आपकी पसंद का, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे वो लोकगीत हो या कोई नज्म हो या कोई सुआ हो, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें।
0: नहीं, साड़ियों के बारे में तो मैं ये कहूँगी, ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा।
1: जी
0: उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, साउथ इंडियन थी वो, 7 हाथ की थी
1: जी
0: और वो जामनी थी और कत्थई रंग की थी। उसमें छुपा हुआ जो रंग था ताने बाने में, वो नेवी ब्लू था, नीला, गहरा नीला।
1: जी
0: तो उसमें उन्होंने ब्लाउज मेरे लिए सिलवाया, कोसे का, गहरे नीले रंग का,
1: जी
0: और सफेद दुपट्टा, रानी का कॉस्ट्यूम चरणदास चोर के लिए।
1: जी
0: तो ये मैंने उनसे सीखा कि रंगों में बैलेंस होता है, और जीवन में भी रंग होते हैं तो वस्त्रों में भी रंग होते हैं, और सबका परस्परस आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, कनेक्शन है, चाहे वो
1: बिल्कुल
0: थिएटर हो, कुछ भी हो।
1: जी जी जी
0: और वो साड़ियाँ खरीदते थे हबीब साहब, वही खरीदते थे कॉस्ट्यूम के लिए, और जैसे अम्मा के लिए साड़ी खरीदते थे, मेरे लिए भी खरीदते थे। तो उनको शौक था साड़ियाँ खरीदने का,
1: जी
0: वो सब लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदते थे बहुत मज़ा लेके।
1: जी
0: ये एक नज़्म है नज़ीर की, तो वो मैं गाना चाहूँगी।
1: जी
0: पतंग वाले के पास आता है नौजवान शख्स और वो ये गाता है,
1: जी
0: तो उस एक दो बंद गाना चाहूँगी।

घर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला सह

0: पांव का छाला, ये मुशायरे की धुन है पारंपरिक।
1: आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, पर आज पहली बार ये मैं शायद किसी इंटरव्यू के आखिर में कह रही होंगी कि अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सारी बातें हैं नगीन जी करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात का एक अंत ज़रूरी है। और आज की बातचीत केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक विरासत से साक्षात्कार था जिसने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। आपने अपनी स्मृतियाँ, अपने अनुभव, अपने मन की बातें हमारे साथ साझा की, और बहुत दोस्ताना तरीके से की, ये कहना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद, और हम ज़रूर आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपके बहुत सारे गीतों के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है नगीन तनवीर जी के साथ ये खास मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया नगीन जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि थीं सुप्रसिद्ध लोक गायिका नगीन तनवीर। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने,
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आमने सामने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स, नमस्कार। पर

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं शहीद भवन में, जहां 30 जुलाई की शाम प्रस्तुति हुई कार्यक्रम रफीनामा की, जिसमें मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी, हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: नमस्कार श्रोताओ, ये हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओ, भारत में अन्य भाषाओं के साहित्य की तरह हिंदी साहित्य में भी जगमगाते सितारों की कमी नहीं है। हिंदी साहित्य में अगर मुंशी प्रेमचंद का नाम ना लिया जाए तो साहित्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मुंशी प्रेमचंद वो नाम है जिसने हिंदी साहित्य में कहानियों की शुरुआत की, वो भी आम लोगों की बातचीत की भाषा में। उनकी कृतियां भारतीयता की परिचायक हैं, इसीलिए उन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। इनकी कहानियां बड़े घर की बेटी, कफन, पर्दा, ईदगाह, हीरा मोती, पंच परमेश्वर को कौन भुला सकता है। सच कहा जाए तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में शब्द नहीं, छोटे तबके के गरीब और लाचार लोगों की दुखती रगे हैं। वो उस समय के समाज का आईना है। ऐसे महान साहित्यकार के बारे में आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे, तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
2: ब्रह्मन् ब्रह्माणो ब्रह्मा वर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः।
3: वाराणसी की पावन धरती से कुछ दूरी पर लम्ही नामक गांव, जहां मुंशी अजायबलाल अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ रहते हैं। 31 जुलाई 1880, वो दोनों खुश हैं क्योंकि आज उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया है। माता पिता अपने वंश को आगे बढ़ता देखकर खुश हैं, तो एक बहन अपने भाई को देखकर। इस नवजात शिशु को देखने उसके चाचा घर आए हैं।
4: माँ, माँ, मैं भाई को क्या कहकर बुलाऊंगी?
5: तू कुछ भी कह, जो तेरा मन चाहे कह। लेकिन मेरा तो ये जीवन धन है, क्यों जी?
6: सही कहा तुमने, आज से मैं अजायब लाल, इसका नाम धनपत लाल रखता हूँ।
5: लाल नहीं, धनपत राय। ये तो साहूकार बनेगा अपने चाचा की तरह।
4: राय कहने से लगता है कि किसी धन्ना सेठ की बात हो रही है।
7: चाचा की बातें हो रही हैं और चाचा से पूछा भी नहीं कि वो क्या नाम रखेगा अपने भतीजे का। है
6: भाभी, तुम कब आए?
8: अरे भाई, लाओ लाओ इसे मेरी गोदी में दे दो।
7: भाई देखूं तो मेरे भाई अजायब का बेटा अपने बाप पर गया है या अपने चाचा पर है?
6: ये लो, उठाओ इसे गोद में और बताओ तुम।
7: अरे रे रे रे रे, मेरा बेटा तो भाई नवाब जैसा लग रहा है। अरे तू तो मेरा नवाब ज्यादा है। अरे लो, नाम सुनते ही इसने मेरे कपड़े गीले कर दिए। अरे नाम इतना पसंद आया है। चल, आज से मैं तुझे नवाब ही कहूंगा, नवाब। हाँ, तो नवाब जी अपनी लंगोटी बदल लो। हाँ।
3: मुंशी प्रेमचंद के बारे में ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली माँ उनके साथ केवल 7 साल ही रह पाई। माँ की मृत्यु के बाद तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन में दुखों ने घर बना लिया। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ के होने पर उन्हें कभी भी पिता का सुख नहीं मिल पाया। परिवार के सदस्य बढ़ने और उन पर किसी का ध्यान न होने से उनका जीवन अभावों और परेशानियों से भर गया। अगर वो किसी के करीब थे तो सिर्फ अपनी बड़ी बहन के।
5: अरे रे, क्या तोड़ा तूने धनपत, स्कूल से आते ही रसोई में घुस गया।
9: कुछ नहीं माँ, भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था माँ।
5: ओफ, वो छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ छोड़ेगा या सारा खुद ही खा जाएगा?
9: लेकिन माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को।
10: है? नहीं है? हाँ। अरे तो तू खुद बना लेना अपने लिए।
9: मैं कैसे?
4: धनपत, ओ धनपत, इधर आ।
9: हाँ बोलो जी जी।
4: अरे चुप
9: चुप, चुप।
4: हाँ, बोल मत, इधर आ मेरे पास।
6: क्या हुआ जीजी?
4: ये ले, मैंने गुड़ की पट्टी रखी हुई है तेरे लिए। माँ ने तो छोटे भाई बहनों को खिला दी। हाँ। और जो बाकी की थी ना, वो अपनी अलमारी में ताले में रखी है।
9: दे दो जीजी, दीदी दे दो, बहुत भूख लगी है।
4: ले ना, ये ले, तू खा ले।
9: हाँ, ला।
4: तब तक मैं तेरे लिए दो रोटी बना देती हूँ। हाँ?
10: हाँ। अरे धनपत, रोटी बना रहा है तो अपने लिए एक ही बनाना, अभी बाकी बहन भाइयों ने भी खाना है, आटा और नहीं है।
9: अच्छा माँ।
10: रोटी खा के बर्तन भी धो देना।
9: हाँ माँ।
10: घर का इतना काम है कि समय ही नहीं मिल रहा बर्तन धोने का। मैं तेरे पिताजी के कपड़े धो रही हूँ। हाँ?
9: अच्छा माँ। जी जी, पिताजी से कहूंगा कि मुझे नए जूते ला के दे। देखो ना, मेरे जूते फट गए हैं।
4: कोई फायदा नहीं धनपत, माँ अपने बच्चों के लिए पैसे निकाल लेगी लेकिन हमारे लिए कभी खर्च नहीं करेगी। हम सौतेले हैं ना।
9: हाँ जी जी, अब तो पिताजी भी बस उन्हीं की मानते हैं, उन्हीं की सुनते हैं।
4: तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ ना यहाँ पर तेरी जीजी, मैं तो तेरा ख्याल रखती हूँ ना।
9: हाँ सो तो है जीजी।
4: अब हंस के दिखा।
9: हाँ।
3: अभावों भरी जिंदगी ने प्रेमचंद को हर पल ठोकरें ही दी। वो मात्र नौवीं कक्षा में थे कि उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। प्रेमचंद के न चाहने के बावजूद उन्हें यह विवाह करना पड़ा, पर उनकी पत्नी ने उनसे कभी प्रेम नहीं किया। वो दसवीं कक्षा में थे कि उनके सिर पर एक और पहाड़ टूटा, उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो सारे घर का भार ही उन पर आ गया। उन्हें पढ़ने की चाहत भी थी लेकिन कमाना भी जरूरी था। उनके सहारे उनकी सौतेली माँ और उनके बच्चे भी थे।

0: अब याद करने का काम भी कर लेता हूँ, नहीं तो स्कूल में बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। पहले ये याद करता हूँ।
1: क्या कर रहा है धनपत? रात के 2 बज गए हैं।
0: वो माँ, मैं पढ़ाई कर रहा था।
1: अगर तू पढ़ाई करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तेरे सभी भाई बहन तो अभी बहुत छोटे हैं।
0: एक वकील के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ माँ, 5 रुपए तो मिलते हैं ना उससे। अब और भी ट्यूशन पढ़ा लूंगा, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी माँ।
1: तू इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दे, फिर नौकरी ढूंढ ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा सुन, तेरी पत्नी मायके गई है, आएगी कब?
0: पता नहीं मुझे।
1: उसे छोड़ने तो तू ही गया था ना, ऐसे बार बार मायके क्यों चली जाती है वो?
0: माँ जब आएगी तो उससे अपने आप पूछ लेना।
1: पर वो आएगी कब?
0: मुझे नहीं पता माँ, मुझे पाठ याद करना है, मुझे पढ़ने दे।
1: ओफो, पता नहीं क्या होगा इस घर का।

0: और मुंशी प्रेमचंद ने प्राइवेट इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, साथ ही अध्यापक की नौकरी भी की। उन्हें वाराणसी में चनूर नामक जगह पर अध्यापन कार्य मिला। फिर 1899 में उन्हें गोरखपुर के सरकारी स्कूल में नौकरी मिली, जो उन्होंने 1921 तक की, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने डेप्यूटी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी कार्य किया। जैसे ही 1899 में उन्होंने गांव छोड़ा, उनकी पत्नी भी हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने बीए पास किया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक विधवा महिला शिवरानी देवी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 1909 में उन्होंने उससे विवाह कर दिया। उन दिनों विधवा से विवाह करना समाज में विवाद का विषय था।
1: अरे, तुम तैयार नहीं हुई? विठल भाई के घर विवाह पर नहीं जाना क्या?
2: आप चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी।
1: क्यों?
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: ओफो, क्या काम है?
2: अरे आप जाइए ना।
1: अरे ऐसा कोई काम जरूरी नहीं जिसे छोड़कर तुम मेरे साथ ना जा सको।
2: आप जाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं?
1: क्या हुआ शिवरानी, किसी ने कुछ कहा तुमसे?
2: नहीं, वो हमसे लोग तरह तरह के सवाल। आप जाइए ना।
1: अरे लोग ताने भी देंगे, देने दो। तुम अपना मन खराब मत करो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता ना। देखो, तुम विधवा थी ये भूल जाओ, मैंने तुमसे विवाह किया है और अब तुम मेरी पत्नी हो। इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई सवाल करे तो जवाब मत दो, कोई भी करे, समझ गई ना मेरी बात? अगर किसी ने मेरे सामने तुम्हें कुछ कहा तो उसे मैं अपने आप देख लूंगा। मुझे किसी की चिंता नहीं है शिवरानी, तुम भी परवाह मत करो। देखो, अगर समाज की परवाह करेंगे तो ये समाज हमें जीने नहीं देगा।
2: जी।
1: चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ।
2: जी, अभी हो जाती हूँ।
0: उन दिनों देश में ब्रिटिश राज्य का पूरा बोलबाला था। देश के हालात को देखते हुए उन्होंने उर्दू में छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह निकाला, सोजे वतन। इस संग्रह का असर ये हुआ कि लोगों ने उन्हें एक लेखक की हैसियत से जाना, क्योंकि उनकी कहानियों में ऐसा कुछ लिखा गया जिससे ब्रिटिश लोगों को लगा कि वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उन्हें देशद्रोही तक समझा गया। जमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर बुरी तरह फटकार लगाई और आगे से ऐसा कुछ भी लिखने से मना कर दिया।
3: What is this? थनपत्राय, क्या है ये सब? सोजे वतन, तुम इंडियंस को अपनी कलम के जरिए भड़काना चाहते हो?
1: नो सर, वो बात।
3: What sir? आर्गुमेंट? पागल हो गए हो तुम? ये सब लिखकर तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका दे रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए।
1: पर सर, हम इंडियन हैं तो।
3: Shut up! Just keep your mouth shut. यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करती है, इंडियन लोग नहीं, और तुम भी सरकारी नौकर हो, अंडरस्टैंड?
1: लेकिन सर,
3: ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हें देशद्रोही मान रही है। You know, थनपत्राय, इस सोजे वतन की सारी कॉपियां मार्केट से उठवा ली गई है।
1: क्या?
3: और सरकारी ऑर्डर हो चुका है कि उन्हें जला दिया जाए।
1: नहीं सर, ऐसा मत करें सर।
3: तुम नौकरी करना चाहते हो या नहीं?
1: सर वो मैं तो।
3: Just shut up and listen to me. अगर तुम्हें नौकरी पर बने रहना है तो तुम्हें आज के बाद राइटिंग बंद करना होगा। This is my order. Now, Out! Out!
0: इस घटना ने तो मुंशी प्रेमचंद के मन में लेखन की इच्छा को और भी भड़का दिया था, इसलिए उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। उस दौर में हिंदी भाषा में केवल राजा रानी की कहानियां ही छपा करती थीं। नॉवल भी लिखे जाते थे पर कहानियां नहीं लिखी जाती थीं। पर आम लोगों को हिंदी भाषा ही अच्छी तरह समझ आती थी। उन्होंने एक फर्जी नाम रखा प्रेमचंद और इसी नाम से हिंदी भाषा में छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की। शुरू में मानसरोवर नामक संग्रह में उनकी कहानियां प्रकाशित हुईं। उनकी कहानी ईदगाह में संवेदनाओं का अच्छा चित्रण है।
4: खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने
5: जलेबी ले लो,
6: खिलौने ले लो,
4: जलेबी खा लो, जलेबी।
6: इतने सुंदर सुंदर खिलौने,
5: मीठी मीठी रेवड़िया,
6: ये बालू, ये गुड़िया, ऊपर नहीं, ये तो मिट्टी के हैं सारे। मिट्टी के खिलौने तो जल्दी ही टूट जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं इन्हें हाथ में लेकर तो देख ही सकता हूँ। हाँ, कितने सुंदर हैं, पर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लेना। अरे चिमटा, दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। चिमटा ले लेता हूँ। भैया
3: बोलो,
6: ये चिमटा देना, कितने का है?
3: 3 पैसे का।
6: मेरे पास 3 ही पैसे हैं। ये लो भैया।
3: ला ला।
6: चिमटा मिल गया, दादी माँ तो खुश होगी।
7: आ गया मेरे बच्चे। क्या खाया मेले में? क्या क्या था वहां पर? अरे चिमटा, चिमटा खरीदा है तूने मेले से?
6: हाँ दादी।
7: क्या पैसे का मोल लिया रे?
6: 3 पैसे का। अच्छा है ना दादी?
7: हाय अल्लाह, कैसा ना समझ लड़का है रे, पूरा मेला घुमाया, सुबह से दोपहर बीत गई पर ना खाया ना पिया, सारे पैसे चिमटे में बर्बाद कराया रे।
6: दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, तो इसीलिए मैंने चिमटा लिया।
7: तूने तूने मेरे लिए लिया रे? तुझे मेले में मिठाई खिलौने देखकर भी लालच नहीं आया, तुझे मेरी उंगलियों के जलने की याद रही, मेरा बच्चा, मेरा अमित, मेरा बच्चा।
6: मत रो दादी।

0: उनकी कहानियों में संवेदनाओं और भावनाओं का अंबार रहता था। वो तो जानवरों में भी संवेदनाओं को ढूंढ लेते थे। हीरा मोती दो बैलों की कुछ ऐसी ही कहानी थी।
1: हाँ मोती, इस कांजी हाउस में तो यूं ही मरना है। अरे सोचो, अगर मुझसे ये दीवार टूट जाती तो कितनी जाने बच जाती। ये घोड़े, ये बकरियां, भैंसे और ये ढेंचू ढेंचू करते हुए गधे सभी आजाद हो जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे।
2: अच्छा दुल्हे, मैं तेरे से कमजोरी सही पर फिर भी जोर लगा।
1: हाँ लगा, जोर लगा।
2: देख देख देख, दीवार टूटते ही घोड़े बकरियां भैंसे कैसे भाग रहे हैं। देख देख देख, ये गधे चुपचाप कैसे खड़े हैं।
1: अरे गधो, तुम लोग भागते क्यों नहीं? सब तो भाग गए, भागो गधो।
2: अगर कहीं फिर पकड़े गए तो?
1: अरे तो क्या हरज है, अभी तो भागने का मौका है, भागो।
2: अरे ना, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे।
1: अरे मैं कहता हूँ भागो भागो।
2: अरे हीरा हीरा, गधों को छोड़, अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर, मुझसे तो टूट नहीं रही।
1: अरे मोती, मैं तो कोशिश कर चुका हूँ। अरे मेरे भाई, तू जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे, शायद फिर कभी भेंट हो जाए।
2: तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ना ना ना ना।
1: अरे मोती,
0: उन्होंने एक के बाद एक 300 कहानियां लिखी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके मुख्य उपन्यास हैं। उनकी कहानियों में क्लिष्ट भाषा और संस्कृत भाषा का प्रयोग न के बराबर था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने कहानियों के माध्यम से बाल विवाह और बेमेल विवाह रोकने तथा विधवा विवाह पर जोर दिया। वेश्या को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने, पूंजीपतियों और जमींदारों के अत्याचार आदि समस्याओं को उजागर करने में कहानियों और उपन्यासों का सहारा लिया। उनके जीवन का एक पहलू और भी था, वो था सादगी। मशहूर कहानीकार हरिशंकर परसाई ने अपनी कहानी प्रेमचंद के फटे जूते में इसे बहुत ही खूबसूरती से उजागर किया है। वो लिखते हैं,
3: प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने, पैरों में कैनवस के जूते हैं। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है, पर तुम्हें जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा ही विश्वास। अरे भाई, लोग तो मांगे के कोट से वर से दिखाई देते हैं, मांगे की मोटर से अपनी बारात निकाल लेते हैं, पर तुमसे तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। लोग तो इत्र चुपड़वा कर फोटो खिंचवाते हैं, जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, पर तुम भाई, तुम तो फटा हुआ जूता भी बड़ी ही ठाट से पहनते हो, और ऊपर से तुर्रा देखो, बड़े ही ठाट हंस रहे हो, जो अपनी उंगली को छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। तुम्हारी उंगली दिख रही है, लेकिन तुम्हारा तलुआ सही सलामत है। हाँ, समझा, मैं बहुत अच्छी तरह तुम्हारी इस व्यंगात्मक मुस्कान को, तुम्हारे पांव की इस उंगली के इशारे को समझ रहा हूं।
0: सच में मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिया था। उस समय शायद उनकी भावनाओं को गांधी जी ने समझा था। उनके फोन करने पर और कहने पर मुंशी प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से देशभक्ति की भावना फैलाने में गांधी जी के साथ हो गए। उन्होंने मर्यादा नाम की पत्रिका में संपादक का पदभार संभाला और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
3: मुंशी प्रेमचंद ने कई पत्रिकाओं हंस, जागरण, माधुरी आदि का संपादन भी किया। उन्होंने बॉलीवुड के फाउंडर और बॉम्बे टॉकीज के फिल्म डायरेक्टर हिमांशु राय के साथ भी काम किया था, लेकिन मूलतः वो हिंदी साहित्य लेखन से ही जुड़े रहे। उनकी पत्नी शिवरानी ने उनका पूरी तरह साथ निभाया। उनके एक बेटा और बेटी हुए। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ। उनके निधन के कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी ने सन 1944 में मुंशी प्रेमचंद के अनछुए पहलुओं को लेकर उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में प्रकाशित की। उनके बेटे अमृत राय ने उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी, कलम के सिपाही, जो काफी पसंद की गई। उनके उपन्यासों पर कई फिल्में भी बनी।
0: इसके अलावा कई टीवी सीरियल जैसे निर्मला, प्रेम सरोवर, गुलदस्ता और तहरीर आदि भी बने। उनकी कहानियां कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं में भी रूपांतरित हुई हैं। सरकार ने उनके जन्मदिन के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। गोरखपुर के स्कूल जहां उन्होंने अध्यापन कार्य किया था, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई, जिसके बरामदे में एक भित्तिलेख व चित्र लगाया गया है और एक संग्रहालय भी है, जहां उनके साहित्य की सभी पुस्तकों और उनसे जुड़ी वस्तुओं को दर्शाया गया है। मुंशी प्रेमचंद एक लौता नाम है जो समाज के हर तबके से जुड़ा है। उन्होंने कई उभरते लेखकों को नई राह दिखाई। साहित्य के इस दीप्तिमान सूर्य को हम भारतवासी प्रणाम करते हैं। जय हिंद।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मैट्रेस स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर, एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
0: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था, जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज्में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया, लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था, बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था। बाईस साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी, जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला।

0: अभिनय करेंगे, लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था। मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी, पतंगे उड़ रही थी, और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
1: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातों रात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
0: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
1: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
0: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा, जहां असली कला अब भी जिंदा है।
1: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
0: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
1: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
0: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
1: इन हीरो में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
0: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे। वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे, अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
1: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था, उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
0: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
1: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को चार अजीब गरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
0: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंच गए। वहाँ यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
1: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरण दास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
0: श्रोताओ, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
1: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा, बल्कि वह विभाजन के दर्द से करहाते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की, जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलिशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
0: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
1: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
0: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
1: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
0: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसके कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
1: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग्य था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
0: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
1: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
0: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 2400 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
1: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए।
0: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालिदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
1: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
0: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
1: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है, कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
0: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों की तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
1: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
0: मैं थी आपके साथ स्वाति।
1: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी 90.8 MHz पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

0: बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई।
1: सांप, वो देखो, सांप, वहाँ, भागो!
2: भागो,
1: भागो, सांप, सांप,
2: भागो,
1: भागो,
2: भागो,
1: भागो!
3: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
4: बेटा, बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
5: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
4: बिले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? हाँ, अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था, बोल।
5: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
4: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरी बेटे की रक्षा की है भगवान, ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव।

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो। दूसरों की मदद के लिए बालक नरेन हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेन मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: बच्चा हट जा रे, हट जा हट जा हट जा, देख नहीं रहा, घोड़ा बेकाबू हो गया है, हटो हटो हटो सब, हट जाओ यहाँ से।
2: अरे गया ये तो, गया, अरे
0: सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेन ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
3: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल, ले ले मेरा हाथ पकड़। आ, आ, अरे अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लो। अब चल।
4: शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली, ना जाने क्या हो जाता आज।
5: वाह बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
3: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है, चल ना।
0: घर आकर नरेन ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही।
6: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया भगवान। बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
3: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
6: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओ बेटा बेटा, ओ, मेरा राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी, गाली गलौच करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: ए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेंद्र उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेंद्र बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम, सेव बोट, फ्रेंड्स, सेव।
2: गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर।
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेंद्र को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेंद्र उसने मना कर दिया और कहा,
1: ओके किड, नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ ब्रेव बॉय।
3: थैंक यू, लेट मदर, वेट, गोइंग,
1: बाय बाय,
3: थैंक यू।
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सिरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुंचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूंछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,
4: यहां भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या चाहिए? चलो हटो यहां से, साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये, हट जाओ वहां से।
3: दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना, हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है।
4: कह दिया ना नहीं, अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं, जाओ निकल जाओ यहाँ से, बाद में आना।
3: बाद में मिलकर क्या करूंगा, जहाज तो कल चला जाएगा।
4: तो हम क्या करें, जाएगा तो जाने दो, तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, कह दिया ना, चलो जाओ, सभी जाओ यहाँ से।
3: और लोग भी तो जा रहे हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो?
4: बहस मत करो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, नहीं जाना है तुम्हें, बस।
0: नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग 2 मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया साहब 2 मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथियों से कहा,
3: चलो चलो चलो सब, दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ।
4: बस
3: तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया।
2: दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा, हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा,
3: ये देखो मिल गई ना अनुमति, बड़े आए थे रोकने वाले।
4: ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया बताओ।
3: हम जादू जानता है।
2: सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं।
0: नरेंद्र नाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे, उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
2: हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था,
3: क्यों भाई सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है?
5: नहीं तो?
3: मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी।
2: उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था,
6: जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं वे ही इस प्रकार की ज्योति देख पाते हैं।

0: बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के नेता होते। उनका नेतृत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
2: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे।
3: अरे इसने तो सब जगह
4: उधर
3: चला गया। हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
2: आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
5: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धागण क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
2: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
1: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेन को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के जलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेन कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
3: अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया। अरे पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
2: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
3: क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
2: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
1: वाह रे नरेन, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
0: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपिस बनाने की ठानी। ट्रेपिस का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपिस का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे, वे ट्रैपेज़ बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
2: सेलर।
4: यस सर।
2: हेल्प।
4: ओके।
1: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा। वो बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए, फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
6: अरे इसका तो सिर फट गया।
5: मर तो नहीं गया?
6: क्या पता, हिलडुल भी तो नहीं रहा।
5: तो अब क्या होगा?
6: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
5: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा।
6: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते, भागो भागो भागो भागो।
0: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
2: ए ए, कोई पानी लाओ, तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी धोती फाड़ कर पट्टी बना देता हूँ, जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ।
1: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब हमारी सभा का समापन समय निकट है, तो समाप्त होने के पहले इस सभा के हम आपको ये बताए देते हैं कि कल सुबह की सभा में आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में, और 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे श्रोताओं, आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग। कल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम। सुबह 8:30 वक्त होता है हमारे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। कल इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा सक्सेना से आप राजा संग्राम शाह, जो कि गौण वंश की राजवंश के राजा हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 9:00 का वक्त होगा योग संवाद का। कल इस कार्यक्रम में विषय है योग वाशिष्ठ मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम भारत विभूति। श्रोताओं, कल इस कार्यक्रम में हमने जिस विभूति को शामिल किया है उनका नाम है आशुतोष मुखर्जी। सुबह 10:00 पेश की जाएगी नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेती हुई हमारी पत्रिका परिक्रमा। साढ़े 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, जो कि आधारित होगा भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पर, जिनकी जयंती भी है। दिन में 11:00 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम सुर सागर। कल इस कार्यक्रम में आप डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन सुनेंगे। और दिन में 11:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।